सुप्रभात, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। सुबह के 7:01 हुए, अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस सभा में। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: को उस रोगी के स्थान पर देखता हूँ जो इतनी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी स्वयं को निश्चिंत होकर मुझे सौंप देता है, और जब मैं उसको इतनी सहजता के साथ स्वयं को मुझे सौंपते हुए देखता हूँ, तब मैं भी अपने को निश्चिंत होकर अपने भगवान को सौंप देता हूँ। बाकी का काम वे स्वयं कर देते हैं। निर्भर होकर भगवान को अपने कर्म समर्पित कर देना ही जीवन में सफलता का सच्चा रहस्य है।
1: जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपको बता देते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से।

यशवंत सिंह दमोह की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनेगा 8 बजे से। इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा, सुनेगा 8:30 से।

कार्यक्रम सुनेगा प्रातः 9 बजे से। इसके अंतर्गत आज सुनेगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी और आपसे बातचीत की है फराज फयाज ने।

सुंदरलाल बहुगुणा पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति सुनिएगा 9:30 से। नगर से जुड़ी कुछ खबरें आप सुन सकेंगे परिक्रमा के अंतर्गत 10 बजे से। 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम काव्य गुंजन। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग एक। कलाकार होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा। डॉक्टर जयंत नार्लिकर पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक आपको सुनवाएंगे 11 बजे से। विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद सुनेगा 11:30 से। इन कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे रेडियो आजाद हिंद से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 125 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं स्वनय दान स्तुति, छंद है त्रिष्टुप और जगति।
1: प्राता रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिग्रहिया निधत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायस पोषेण सचते सुवीरः। प्रभातकालीन सूर्यदेव स्वास्थ्य प्रद पोषक तत्वों को लाकर मनुष्यों के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृत कृत्य होते हैं। उससे मनुष्य दीर्घायुष्य प्राप्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा स्वास्थ्य जीवन को प्राप्त करते हैं। सुगुर सत्सु हिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै वय इंद्रो दधाति यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षी यजेव पदि मुत्सिनाति। जो दानी मनुष्य प्रातः उठते ही किसी याचक को रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। आय मद्य सुकृतम प्रातरिच्छिन निष्टेह पुत्रम वसुमता रथेन अंशोह सुतम पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरम वर्धय सूनृताभिः। हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आए हैं। आप सुखदायक अभिषुत सोमरस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रय दाता आप हमारा शुभ आशीषों से मंगल करें। उपक्षरन्ति सिंधवो मयोभुव ईजानम च यक्ष्यमाणं च धेनवः प्रणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः। इस समय यज्ञ कार्य करने वालों तथा भविष्य में भी यज्ञीय भाव को पोषित करने वालों के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले याजकों को अन्न की समृद्धि में समर्थ गौएं घृत की धाराएं प्रदान करती हैं। नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रणाति सः देवेषु गच्छति तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिंधवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। जो अपने आश्रित मनुष्यों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध करते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उस दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित्त सदैव अन्नादि का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। दक्षिणावता मिदिमानि चित्रा दक्षिणावताम दिवि सूर्यासह दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते दक्षिणावंतः प्रतिरंत आयुः। ये विलक्षण उपलब्धियां मात्र सार्थक दान दाताओं को प्राप्य हैं। दिव्य लोक में भी सूर्य देव उनके लिए ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दान दाता ही अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभ कामनाओं से दान दाता की आयु में वृद्धि होती है। मां प्रणंतो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिद् प्रणंतमभिसंयन्तु शोकाः। यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले तथा मनुष्यों को कल्याण रूप दान से संतुष्ट करने वाले दुखों और पाप कर्मों से बचे रहें। ज्ञान साधक और यम नियमादि व्रतों को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, प्रभु की कृपा से मिली इस पावन सुबह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सूर्य के पहले किरण के साथ ईश्वर ने हमें फिर एक नया अवसर दिया है अपने मन को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को पवित्र करने का। तो आइए मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करें और दिन की शुरुआत करें भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आप सभी के लिए आज का दिन शुभता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

सच्चा सुख बड़ी उपलब्धियों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शांत क्षणों में भी दिख जाता है। जो इसे पहचान लेता है वही जीवन का आनंद समझता है।

हर सुबह उठकर मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आँखों से और मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो।

और इसी के साथ हमारा आज का ही कार्यक्रम भक्ति संगीत का अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल, रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल 90.8।
2: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। ये जोश ये जुनून हमारे वीर क्रांतिकारियों के सीने में सुलगता रहता था और फूटता तो ज्वालामुखी की तरह, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। बड़ी बात यह नहीं थी कि विरोध की आवाज कितनी बुलंद हुई या क्या परिणाम हुआ, वो ललकार बनी या शोर हुई। क्रांति पथ पर बड़ी बात यह थी कि लगातार आवाज उठाई गई। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, रिश्ते नातों को छोड़ा और देश के लिए खुद को समर्पित किया। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है यशवंत सिंह। यशवंत सिंह का जन्म 27 जुलाई सन 1909 को सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम था नन्हू सिंह। यशवंत की आरंभिक शिक्षा दमोह के म्युनिसिपल हाई स्कूल में हुई थी। वे रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ये वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बलिदान देश की रगों में उबल रहा था। यशवंत सिंह ने भी प्रतिज्ञा ली कि अब उनकी हर सांस सिर्फ देश के लिए है और वो क्रांति गतिविधियों में संलग्न हो गए। घर वालों की जिद पर उनका विवाह हो गया, लेकिन शादी की पहली रात ही उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था, तुम इस घर में रह सकती हो, किंतु मेरी सच्ची सहधर्मिणी मेरी कटार है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं और इस धरती के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, जिनसे मुझे निरंतर युद्ध करते रहना है। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मैं जा रहा हूं। ये अपनी पत्नी से उनकी पहली और अंतिम भेंट थी। यशवंत सिंह घर छोड़कर चले गए और पत्नी तक दोबारा लौटे तो तभी जब पत्नी की चिता जल रही थी। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और चिता की भस्म हाथों में ले सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे आकर मिलूंगा। यशवंत सिंह अब रेल विभाग में नौकरी कर रहे थे। भुसावल में वो कैबिन मैन थे। रेलवे की नौकरी के साथ ही वो क्रांति कार्य में पूरी तरह संलग्न थे। अपने दो मित्रों देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ मिलकर वो क्रांतिकारी साहित्य के वितरण का कार्य करते थे। इस तरह जनता में क्रांति साहित्य पहुंचाकर वो आम जन को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे थे। इन तीनों क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि 23 जुलाई सन 1931 की रात पंजाब मेल से ब्रिटिश फौजी अफसर लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा करेगा, जिसके पास एक अच्छी राइफल होगी। इस राइफल की आवश्यकता क्रांतिकारियों को थी। यशवंत सिंह ने नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ली और खंडवा जा पहुंचे और यहां अपने दोनों साथियों से मिलकर अफसर से राइफल छीनने की योजना बनाई। खतरा कम नहीं था। किसी भी अंग्रेज अफसर पर हाथ रखना अंग्रेजों के सीधे निशाने पर आने जैसा था, लेकिन यशवंत सिंह तो आजादी के दीवाने थे। सैनिकों सा जज्बा दिल में लिए वो बढ़ चले थे क्रांति पथ पर।

यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ 23 जुलाई सन 1931 को खंडवा स्टेशन पहुंचे। तीनों ने प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद लिए थे। पंजाब मेल जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो वो उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा कर रहा था, जो बंबई से पुणे जा रहा था। इस डब्बे में लेफ्टिनेंट शीहन भी था, जो 28 फील्ड ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट था। हैक्स के साथ एक कुत्ता भी था। तीनों क्रांतिकारियों ने डब्बे का पूरा जायजा लिया और सतर्क होकर बैठ गए। सुबह 4 बजे का समय था। गाड़ी डोंगरगांव और मांडवा स्टेशन के बीच द्रुत गति से दौड़ रही थी। दोनों अंग्रेज अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। स्थिति अनुकूल पाकर यशवंत सिंह और देव नारायण ने कटार से लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला बोल दिया और दलपत राव शीहन के पास पहुंच गया, ये सोचकर कि यदि वो हैक्स को बचाने की कोशिश करे तो वो उसे रोक लेगा। डब्बे की हलचल सुन हैक्स का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और दोनों ही अंग्रेज अफसरों की नींद खुल गई। लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला होता देख शीहन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दलपत राव ने शीहन पर अपने कटार से वार कर दिया। शीहन ने कटार को मजबूती से पकड़ लिया और फिर दोनों भिड़ गए। इस जोर आजमाइश में कटार टूट गई और मूठ वाला हिस्सा दलपत राव के हाथ में रह गया और कटार की धार शीहन के हाथ में आ गई। शीहन ने कोई गलती नहीं की और कटार के टूटे हुए फल से दलपत राव पर उसने वार कर दिया। इसके साथ ही बड़ी फुर्ती से लाइट जलाकर गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींच दी। धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से रुकती उसके पहले ही तीनों क्रांतिकारी गाड़ी से कूद गए और पास के जंगलों की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन के डब्बे में लेफ्टिनेंट हैक्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी राइफल क्रांतिकारियों के पास पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते लेफ्टिनेंट हैक्स को पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वो बुरी तरह से घायल था। पूरी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसने दम तोड़ दिया। अंग्रेजों के भीतर खलबली सी मच गई। लेफ्टिनेंट शीहन से क्रांतिकारियों का हुलिया पूछा गया। तमाम जानकारी लेकर अपराधियों की खोज आरंभ हुई। तीनों क्रांतिकारी अपनी हिम्मत और वीरता के बल पर अपने मकसद में कामयाब हो आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनके सर पर तो स्वाधीनता का जुनून सवार था।

एक पुलिस दरोगा जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, क्रांतिकारियों की खोज में वो रेलवे लाइन की ओर बढ़ने लगा। उसे अंदाजा था कि हो न हो सुबह होते होते कुछ लोगों ने उन क्रांतिकारियों को भागते हुए जरूर देखा होगा। रेलवे लाइन पर कुछ लोग काम करते हुए उसे मिले। उनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति नेकर, काला कोट और जूते पहने हुए मांडवा स्टेशन की तरफ गया है। बातचीत चल ही रही थी कि रेलवे ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस दरोगा ने वो ट्रॉली रुकवाई। ट्रॉली में बंबई का डिप्टी चीफ इंजीनियर, भुसावल डिवीजन का इंजीनियर और एक सहायक बैठे हुए थे। दरोगा ने सारी घटना उन्हें बताई और वो चारों क्रांतिकारियों की तलाश में मांडवा की ओर चले गए। कुछ दूर पहुंचने पर पटरी पर चलता हुआ एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। हुलिया बिल्कुल वही था जो रेलवे लाइन में काम करने वालों ने बताया था। ट्रॉली की आवाज उस व्यक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही ट्रॉली रुकने को हुई, वो व्यक्ति फुर्ती में आया। वो तुरंत पटरी छोड़ जंगल की तरफ भागा। ट्रॉली पर सवार लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते हुए पास ही एक पुलिस स्टेशन मिला। दरोगा ने वहां पहुंचकर अपनी सहायता के लिए कुमुक मांगी। 50 जवानों ने जंगल के उस क्षेत्र में क्रांतिकारियों की खोज शुरू की। 5-5 जवानों के जत्थे बने और पूरे जंगल में वो फैल गए। लेकिन वो क्रांतिकारी चतुराई से फिर रेलवे लाइन पार कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगा। वो एक खेत पार कर रहा था कि तभी वहां काम करने वाले मजदूरों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये देवनारायण तिवारी थे। अगले दिन एक विश्वासघाती ने यशवंत सिंह का पता दिया और वो भी गिरफ्तार हो गए। और इसके कुछ दिनों बाद दलपत राव भी पकड़े गए। तीनों क्रांतिकारियों पर 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में मुकदमा चला। 21 सितंबर सन 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई तथा दलपत राय को आजन्म निर्वासन का दंड दिया गया। फांसी के पूर्व यशवंत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आप मेरी मृत्यु से दुखी न हों। आप यही समझें कि आप 6 नहीं 5 पुत्रों के ही पिता थे। मैं एक वीर की मौत मरूंगा, आपको भी मुझ पर गर्व होना चाहिए। और इस तरह 21 सितंबर सन 1931 को जबलपुर के केंद्रीय कारागार में यशवंत सिंह को देवनारायण तिवारी के साथ फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अमर हो गए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इसके अंतर्गत आज सुनिए रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 10वीं कड़ी लेकर हाजिर हैं। इतिहास के पन्नों से। हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, यानी 9वीं कड़ी में सुना था कि गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पहले दिन गढ़ा के राजा वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और 3 बार मुगल सेना को नरई घाटी से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार पहले दिन गढ़ा राज्य की विजय हुई, किंतु युद्ध में वीर नारायण के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। वो अत्यंत पराक्रम से लड़ रही थी। उस दिन दोपहर के बाद आसफ खां की सेना के तोपखाने ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर के सैनिक हताहत हो रहे थे। शाम होने को थी। इसी बीच रानी दुर्गावती की दाई कनपटी पर एक तीर आकर लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक तीर और उनकी गर्दन में जा लगा और दूसरा तीर उनके सीने पर। रानी दुर्गावती अच्छी तरह जानती थी कि शत्रु मुगल सेना के हाथों जीवित लगना कितना अपमानजनक होगा। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने महावत आधार सिंह बखीला को कहा कि वो अपनी कटार से रानी की जीवन लीला समाप्त कर दे, जिससे वो शत्रु के हाथ ना लगे। लेकिन महावत आधार सिंह बखीला तो उन्हें अपनी मां मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे निवेदन किया कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो केवल उन्हें आज्ञा प्रदान करें। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र से कैसे पलायन कर सकती थी, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुई। अगले ही पल उन्होंने स्वयं ही अपने आप को कटार मार ली और गढ़ा की अस्मिता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। रानी दुर्गावती वीरांगना हुई। एक बार फिर इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूजा जी, आगे जानना चाहेंगे आपसे कि रानी के प्राणोत्सर्ग के उपरांत क्या हुआ।
3: रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य की अस्मिता के लिए वीरांगना हुई थी। वह प्राणोत्सर्ग करने के बाद भी विजयी हुई। उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, जिजीविषा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। जैसा कि आख्यान में भी कहा गया है कि ताक निशाना महारानी के हो नहीं कोई उपचार, जख्मी चोट लगिन सतन मां बहे रक्तन की धार। माता का रक्त जो है वो बह रहा है, उनके सीने पर वाण लगा है, चोट लगी है। जोर फिरंगी माथा मां मोहे नहीं जावे आँच, नारी के तन आए बचा हूं यही है हवे मोला सांच। नारी का तन अब बचाना होगा, उसके अपमान से बचाना होगा। कहत कहत माता गिरिए पावे गति निर्वाण, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। फिर आगे कहते हैं कि माता अब गिर रही हैं और निर्वाण को प्राप्त कर रही हैं। सोचिए, एक वीरांगना है, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है। ऐसे भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। और उन्होंने तो अब अमृत का चोला पहन लिया है
1: जी।
3: और वो अब परलोक को सिधार रही है। चलो चढ़ी गढ़ा मां मितवा, करवो तन निसार, हाथ जोर विनती करे हो जय जय होए तुम्हार। तो माँ की जय है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में।
1: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण मा जूझे तलवार, माता दुर्गा कहाए, जय जय होवे तुम्हार, जय जय होवे तुम्हार। वाह पूजा जी, रानी के प्राणोत्सर्ग करने पर जिस प्रकार हमें आख्यान में ये वर्णन मिलता है, उसी तरह क्या अन्य ग्रंथों में भी कुछ उल्लेख है?
3: जी हाँ, गणा राज्य के ख्याति लब्ध कवि थे कवि केशव दीक्षित और नरहरि महापात्र, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी
1: जी।
3: इनके द्वारा गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था
1: जी।
3: जिसमें इन्होंने लिखा कि रानी दुर्गावती वीर शिरोमणि राजा दलपति शाह की लक्ष्मी के समान है, जिसकी स्तुति चारों दिशाओं में श्रेष्ठ राजाओं और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। सत्य के प्रति आसक्त मन वाली, चंद्रमा की तरह पवित्र कीर्ति युक्त, कर्ण के समान दानी, दुर्गा के अवतार वाली यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण कर लेती है
1: जी।
3: इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कहा है और आगे लिखते हैं कि जिसके नाम की कीर्ति रूपी लता स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में अबाध गति से गंगा की तरह बढ़ने लगी, दुर्गा की अवतार यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण करने वाली थी।
1: वाह क्या बात है पूजा जी। जैसे आपने बताया था कि मुगल सेना की तरफ से भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें रानी के बारे में उल्लेख था, क्या प्राणोत्सर्ग के बाद कभी कुछ उल्लेख है उनमें?
3: बिल्कुल, मुगल साहित्य में भी रानी दुर्गावती के पराक्रम की चर्चा होती रही, इसलिए अकबरनामा में उस पल को चित्रित किया गया जब रानी को अनेक तीर लग चुके थे।
1: अच्छा।
3: वह प्राणोत्सर्ग करने ही वाली थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उनके हाथी सरमन को भी अनेक तीर लगे हुए हैं, फिर भी वह रण में चिंघाड़ रहा है। महावत आधार सिंह बखीला ने भी रानी को बचाने के लिए तलवार उठा रखी है और वह भी वीरता पूर्वक लड़ रहा है। उनके सेनानायक उन्हें चारों ओर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुगल सेना का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अनेक सैनिक नदी के किनारे लहूलुहान पड़े हैं। अबुल फजल ने इस भीषण युद्ध का शब्दों में भी जिक्र किया, जिसमें अनेक सैनिकों के हताहत होने और गढ़ा राज्य के प्रमुख सेनापतियों जैसे कनूर कल्याण बखीला, चकरमान खरचली, खान जहान डकीत और महारक ब्राह्मण के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी।
1: अच्छा।
3: मुगल इतिहासकार बदायूं ने भी रानी के प्राणोत्सर्ग पर लिखा है, लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो बहुत बुरा है। बदायूं ने लिखता है कि प्रत्येक घृणित पशु अपना घृणित भोजन प्राप्त कर ही लेता है, यानी उसका कहने का अर्थ है कि दुर्गावती को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी वैसी ही मिली, जो उसकी नियति होनी चाहिए थी वैसी ही हुई
1: जी।
3: और यहाँ तक ही वो रुकता नहीं है और आगे लिखता है कि यह सच है कि किसी ईसाई का कुआं शुद्ध नहीं होता, किंतु वह कम से कम एक यहूदी की लाश धोने के काम तो आ ही जाता है। युद्ध में शत्रुओं के लिए इस तरीके से टीका टिप्पणी करने की परंपरा भारत में कभी नहीं रही थी।
1: बिल्कुल।
3: किंतु बदायूं ने अपनी सीमाएं भूल जाता है और एक रानी जो पराक्रम के साथ पराकाष्ठा तक लड़ी, उसके प्रति इस प्रकार से लिखना उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है।
1: निश्चित रूप से पूजा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। आपने जब बात की अकबरनामा की, उसमें कितनी ही बार ये जिक्र आया कि वो कितनी बड़ी योद्धा थी, उनके रूप सौंदर्य के साथ उनके गुणों की भी चर्चा की गई, और फिर मृत्यु के पश्चात तो हमारे यहाँ दुश्मन की भी कोई बुराई नहीं की जाती रही है। लेकिन मुगल सेना के साहित्य में यदि इस तरह का कुछ मिला है तो निश्चित रूप से इस तरह की लिखावट ही हम कह सकते हैं कि वो घृणित है। पूजा जी, रानी तो यहाँ वीरांगना हो गई, ये जिक्र आ गया, कहानी हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन जब रानी वीरांगना हुई उसकी एक दिन पहले उनके पुत्र जो कि राजा वीर नारायण थे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें सेना किसी तरह बचा करके ले गई थी, तो उस सेना की टुकड़ी का क्या हुआ, राजा वीर नारायण का क्या हुआ और क्या मुगल सेना ने उन पर हमला नहीं किया?
3: जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में घायल राजा वीर नारायण को गढ़ा की सेना की एक टुकड़ी बचाकर चौरागढ़ के किले में ले गई थी
1: जी।
3: और यहाँ बुरी तरह से घायल वीर नारायण का उपचार होने लगा, लेकिन आसफ खां को ये खबर लग चुकी थी कि वीर नारायण चौरागढ़ के किले में है। उसने चौरागढ़ की ओर अपनी सेना सहित कूच कर दिया।
1: अच्छा।
3: आसफ खां की सेना का सामना गढ़ा राज्य के मंत्री आधार सिंह कायस्थ ने किया, किंतु आसफ खां की सेना के सामने निश्चित ही था कि चौरागढ़ का बचना मुश्किल था
1: जी।
3: इसलिए जब सेना चौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई तो घायल वीर नारायण भी पूरी वीरता से उनका सामना करते हुए लड़े, किंतु इस युद्ध में वीर नारायण युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
1: निश्चित रूप से गढ़ा की सेना यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन बहुत दुखद के माँ और बेटे दोनों की मृत्यु एक दो दिन के अंदर अंदर वहां पर हो गई। तो क्या फिर मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया?
3: अब यह निश्चित था कि मुगल सेना किले में प्रवेश करेगी ही।
1: जी जी,
3: वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो ही चुके थे
1: जी।
3: आधार कायस्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया। लूटपाट, आगजनी, फसलों को नुकसान पहुंचाना, पशुओं को खदेड़ना, ये सब तो होना ही था और हुआ भी। लेकिन इसके अलावा स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा, जैसा कि उस समय होता भी था, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए युद्ध के परिणाम के अनुमान के अनुसार किले में जौहर की तैयारियां की जा चुकी थी। जैसे ही मुगल सेनापति आसफ खां की सेना चौरागढ़ के किले के अंदर घुसी, दूसरी ओर किले की स्त्रियों ने भीषण अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया। यह कितना भयावह दृश्य रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अबुल फजल ने इस जौहर का उल्लेख इस प्रकार किया है कि वृत्ताकार यानी कि एक गोलाकार कुंड में भीषण आग लगी थी, सभी स्त्रियां एक एक करके उसमें प्रवेश कर गईं। वह कहता है जैसे गुलाब की फसल आग लग जाने पर राख में तब्दील हो जाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अग्नि कुंड में प्रवेश करते ही राख में तब्दील हो गईं। सभी स्त्रियां उसमें जलकर राख हो गईं। वह आगे लिखता है कि जब उस जगह का द्वार खोला गया जहां अग्नि कुंड था, तो केवल दो ही स्त्रियां जीवित अवस्था में मिली थीं।
1: अच्छा,
3: ये दोनों स्त्रियां इसलिए बच गई थीं क्योंकि लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी कि बीम
1: जी
3: उनके पास आकर इस प्रकार गिरा कि वह आग में झुलस नहीं पाई और बेहोश हो गई।
1: वाकई श्रोताओं, कितना विभत्स, कितना ये कठिन दृश्य रहा होगा जिस किसी ने भी वो देखा होगा, भले ही वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो। और यदि आप उस जौहर की कल्पना भी करें तो रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़ा की जो महिलाएं थीं वो वाकई में सब की सब अपनी रानी की तरह ही उस जौहर में कूद कर वीरांगना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपने दिया। पूजा जी, ये दो स्त्रियां कौन थी जो उस कुंड में जौहर करने के बाद भी किसी तरह से बच गई थी, और क्या उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ?
3: ये दोनों स्त्रियां कौन थीं इसका भी उल्लेख अबुल फजल ने ही किया है। पहली थी वीरांगना रानी दुर्गावती की बहन कमलावती।
1: अच्छा।
3: और दूसरी थी पूरागढ़ के राजा की कन्या यानी पूरागढ़ की राजकुमारी। इनका नाम तो नहीं मिलता है
1: जी,
3: पर उल्लेख है। इस राजकुमारी से ही राजा वीर नारायण का विवाह तय हुआ था।
1: ओहो।
3: और कुछ ही दिनों में इनका विवाह होने भी वाला था, किंतु राजा वीर नारायण के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने का समाचार सुनते ही पूरागढ़ की राजकुमारी ने सहर्ष जौहर करना स्वीकार किया।
1: जबकि वो विवाहित भी नहीं थी।
3: जी हाँ, तब वह विवाहित भी नहीं थी, 16-17 साल की रही होंगी। वह अन्य स्त्रियों के साथ जौहर के लिए अग्निकुंड में सहर्ष ही प्रवेश कर गई थी, संभवतः रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और इस राजकुमारी ने सर्वप्रथम अग्निकुंड में प्रवेश किया होगा, क्योंकि शायद आग पूरी तरह फैल नहीं पाई होगी और आग लगते ही ऊपर की ओर लगा लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी बीम का कोना जल गया होगा और वो नीचे गिरा। उसके गिरते ही ये दोनों उसके पीछे दबकर बेहोश हो गईं और बच गईं। लेकिन इनका बचना शायद जौहर से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। इनकी जो परिणति हुई उसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती के साथ ही राजकुमारी को भी अकबर के मुगल हरम की घृणित यातनाओं को झेलना पड़ा।
1: हो, ये कितना दुखद है श्रोताओं। देखिए कि एक 16-17 साल की जो बालिका जिसका विवाह राजा से तय हुआ है, और जब उस बच्ची ने, उस बालिका ने, उस तरुणी ने जब ये सुना कि उसके होने वाले पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सहर्ष जौहर के लिए तैयार हो गई और उस किले में आ गई जहां पे जौहर होना तय हुआ था। मनचाही मौत तो उसे नसीब नहीं हुई, वो किसी तरह बच गई, लेकिन फिर भी उसके शौर्य की गाथा सुनकर हम आज उसे वीरांगना निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अकबर का चरित्र देखिए कि अकबर का जो हरम था, जहाँ इन बची हुई दो मासूमों को वहाँ पर ले जाया गया, जो किसी तरह मौत के मुंह से बच गई थी, फिर भी अकबर के हरम में उन्हें शामिल किया गया। ये कितना घृणित था, और इससे समझ में आता है पूरी मुगल सेना का चरित्र किस तरह का था। पूजा जी, जैसा कि महिलाओं ने जिस स्थिति से बचने के लिए जौहर किया था, उससे ये तो नहीं बच पाई, लेकिन जिसके लिए हमेशा से अकबर की सेना, मुगल सेना और पहले के भी मुगल बदनाम थे कि जब वो युद्ध क्षेत्र के लिए जाते थे, जब वो कहीं किसी तरह से विजय प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद वो जो जो चीज़ें करते थे वहाँ पर, क्या यहाँ भी उन्होंने वही किया, लूटपाट मचाई, क्या फसलों को नुकसान पहुँचाया?
3: बिल्कुल, रानी दुर्गावती के प्राणोत्सर्ग के बाद आसफ खां की सेना गढ़ा राज्य में घुस गई
1: जी।
3: और जैसा कि अक्सर मुगल सेना किया करती थी, उन्होंने यहाँ अंधाधुन पशुओं को खदेड़ा, फसलों को नुकसान पहुंचाया और उससे भी अधिक शहरों में लूटपाट की, गांवों में घुस गए, वहाँ लूटपाट की। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को, मठों को क्षतिग्रस्त किया, और लंबे इतिहास में अगर हम देखें तो जो हम एक देख रहे थे कि गढ़ा राज्य में वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी, लगातार आचार्य आ रहे थे और वैष्णव धर्म के अनेक मठ मंदिर यहाँ बन रहे थे, उनमें विद्या अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा था, उस सब पर एक लगाम से लग गई और बहुत लंबे समय तक, हम देखते हैं लगभग 100 वर्षों तक, फिर दोबारा इस तरीके के अध्यापन केंद्र हमको गढ़ा राज्य में ना के बराबर दिखाई देते हैं
1: जी।
3: इसके अलावा जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था वो भी रुक गया और बहुत तरीके से क्षति पहुंचाई गई।
1: अच्छा पूजा जी, एक और चीज का वर्णन यहाँ पर सुनने को आता है कि आसफ खां, जिसे कि अकबर ने खुद वहां पर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, उसने खुद अकबर से ही यहाँ पर गद्दारी की थी, क्या ये बात सही है?
3: बिल्कुल सही है। चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला, कोई सीमा नहीं थी जिसकी। अबुल फजल खुद लिखता है कि उसे वहां सिक्के, ठोस रूप में सोना, नक्काशीदार पात्र, हीरे जवाहर मोती, सोने से बनी पशुओं की अनेक ठोस आकृतियां और अन्य दुर्लभ कीमती वस्तुएं मिली थी
1: जी।
3: उसे 100 से अधिक बड़े बड़े घड़े मिले थे जो सोने के अशर्फियों से भरे हुए थे। लेकिन वह आगे भी लिखता है कि आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के साथ ही धोखाधड़ी की, यह तो उसका पुराना चरित्र ही था
1: जी।
3: और चौरागढ़ के लूट के माल का सही ब्यौरा अकबर को आसफ खान ने दिया ही नहीं, बल्कि जो धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ी संख्या में हाथी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिली थी, उसकी सही जानकारी उसने अकबर को दी ही नहीं
1: जी।
3: उसका 10% भी उसने नहीं बताया, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है
1: जी।
3: जिसका खुलासा बाद में हुआ था और पता चला कि 10% ही केवल बताया गया था। अकबरनामा की एक अन्य पेंटिंग है जिसमें आसफ खां को चौरागढ़ की लूट का माल अकबर के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है।
1: अच्छा,
3: इसमें सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई थाल दिखाए गए हैं और कुछ में तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं
1: जी।
3: कुछ हाथी खड़े हैं और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी वो पेश कर रहा है जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
1: जी।
3: यानी जो पेंटिंग में दर्शाया गया है वह तो चौरागढ़ से प्राप्त संपदा का बहुत ही कम भाग है
1: जी।
3: किंतु मुगल दरबार इतनी संपदा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया था। आसफ खां लूट के माल का कुछ अंश अकबर को देकर और रानी को प्राणोत्सर्ग पर विवश करने जैसे कुकृत्य पर वाहवाही बटोर कर गढ़ा राज्य वापस लौट आया।
1: अच्छा,
3: इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच युद्ध के उपरांत की संधि हुई।
1: अच्छा,
3: गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे
1: जी।
3: यानी कि राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर हुए
1: जी।
3: तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गढ़ा के विशाल राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया
1: जी।
3: हमने गढ़ा राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के विषय में जब चर्चा की थी
1: जी।
3: तो बताया था कि उनके अधिकार में 52 किले थे, इन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ गढ़ा राज्य को अकबर को देने पड़े।
1: पूजा जी, जो संधि के मुताबिक गढ़ा राज्य और मुगल शासक के अकबर के बीच जो संधि हुई, तो उसमें जो 10 किले थे, जो 10 गढ़ थे, वो मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य ने दे दिए। तो क्या फिर अकबर ने उन पर शासन किया उसके आगे?
3: जी हाँ, अब ये 10 गढ़ों पर मुगल शासक का अधिकार था
1: जी,
3: और आसफ खान गढ़ा लौट चुका था
1: जी।
3: अब वो यहाँ का सूबेदार बन गया था। उसके पास अकूत संपदा थी जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी, जिसका पता अकबर को भी नहीं था
1: जी।
3: तो अब वो यहाँ आकर अपनी मनमानी करने लगा, और जब अकबर को खबर पहुंची तब फिर अकबर ने उसकी खबर ली। अच्छा। ये आगे का इतिहास है।
1: अच्छा।
3: लेकिन जब 10 गढ़ मुगल साम्राज्य के पास आ गए, तो अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इन गढ़ों पर दिल्ली से शासन करना अत्यधिक कठिन है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में है, इन पर कब्जा जमाए रखना आसान नहीं था। इसलिए अकबर को यह गढ़ गोंडों को वापस करने पड़े।
1: वाह।
3: किंतु अकबर ने यह गढ़ गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश के उत्तराधिकारी चंद्र शाह को वापस नहीं किए।
1: अच्छा।
3: बल्कि उन गढ़ों में जो स्थानीय किलेदार आदि थे, उनको ये गढ़ वापस किए गए, जिससे नए गोंड राजवंशों का उदय हुआ।
1: अच्छा।
3: ये जो 10 गढ़ दिए गए थे, ये थे रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई।
1: अच्छा।
3: ये सभी किले मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल
1: जी।
3: और उसके आसपास स्थित हैं।
1: जी।
3: भोपाल और रायसेन तो आसपास है ही, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में, और आजकल बड़े शहर भी हैं। गढ़गुन्नौर अब गिन्नौरगढ़ के नाम से जाना जाता है
1: जी।
3: बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ ये भी भोपाल के आसपास के जिलों में स्थित हैं
1: जी, बिल्कुल।
3: मकड़ाई और कारूबाग यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले और उसके आसपास स्थित हैं। तो गिन्नौरगढ़ से भोपाल के गढ़ा राज्य का उदय हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध रानी कमलापति हुई
1: जी, बिल्कुल।
3: और मकड़ाई भी गोंड शासित स्वतंत्र राज्य बना, जो सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक, 1947 तक
1: जी,
3: गोंड राजवंश द्वारा शासित रहा।
1: अच्छा।
3: इधर गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में राजा चंद्रशाह के उत्तराधिकारी भी हुए
1: जी।
3: उनके उपरांत मधुकर शाह और प्रेम शाह क्रमशः गढ़ा के राजा बने
1: जी।
3: यहाँ जो उल्लेखनीय राजा रहे वो थे हृदय शाह
1: जी, बिल्कुल,
3: जो 1635 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे
1: जी,
3: जिन्होंने गढ़ा की राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का
1: जी,
3: वहां पर नर्मदा नदी के किनारे रामनगर के नाम से बसाई।
1: तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां श्रोताओं हमें मिल रही हैं। 10वीं कड़ी आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्नों से की, और हमारे साथ बनी हुई है इन तमाम एपिसोड्स में डॉक्टर पूजा सक्सेना, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी, इसके बाद की कहानी क्या, किसका जिक्र होने वाला है, थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि आज तो समय हो गया है, श्रोताओं की उत्सुकता जरा बरकरार रहनी चाहिए।
3: अब हम आगे जो सुनेंगे वो राजा हृदय शाह की कहानी सुनेंगे, उन्होंने अपनी राजधानी कैसे परिवर्तित की
1: जी,
3: कैसे बसाई, और क्योंकि वो बहुत अधिक संगीत प्रेमी थे।
1: अच्छा।
3: तो संगीत में उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, और स्थापत्य कला में भी। तो अगली कड़ी में हम उनके बारे में जानेंगे।
1: चलिए, तो राजा हृदय शाह, यानी कि जो कि राजा हृदय शाह के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, खास तौर पर बुंदेलखंड रीजन में, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। हम आपको बता दें पूजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर पूजा सक्सेना, अगले एपिसोड में भी पूजा जी हमारे साथ रहेंगी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करेंगी। इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड किया है और संपादन किया है अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
2: पन्नों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु। इसके अंतर्गत आज आपको बता रहे हैं दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे।
1: 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
3: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की
1: विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। ये दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
4: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
5: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
4: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
5: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ों बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं, तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते

0: ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक
1: जी।
0: है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं। तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इकोसिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उसके उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान लीजिए किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
1: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा
0: जी। उनका जो
1: हर क्षेत्र में
0: हाँ लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप

0: अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते
1: जी
0: हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए
1: जी
0: कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, नहीं कर तक करते ने पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस
1: जी
0: है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब बच्चे लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे,
1: जी
0: अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची थी, इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है, तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता, सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोगों की जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं

0: अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको तो, और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
1: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
0: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
1: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा, मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए, है ना। पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैम्प, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
1: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
0: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएँ भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
1: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
1: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: जी थैंक यू।
1: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण आप सुन रहे हैं।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति। आज का कार्यक्रम केंद्रित है सुंदरलाल बहुगुणा पर।
1: भारत विभूति में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय पर्यावरण आंदोलन का पर्याय बन गया। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वह केवल एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और अटूट संकल्प की अद्भुत गाथा है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी वर्ष 1927 को उत्तराखंड के तत्कालीन टिहरी गढ़वाल रियासत के मरोड़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नारायण दत्त बहुगुणा और माता का नाम जया देवी था। बहुगुणा जी का बचपन गढ़वाल की पहाड़ियों की गोद में बीता, जहाँ प्रकृति से उनका गहरा नाता बना।
3: उनके परिवार में पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता, वनों की महत्ता और प्रकृति के साथ मानव जीवन के अटूट संबंध को देखा और समझा। यह प्रारंभिक अनुभव उनके भावी जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।
1: बहुगुणा जी की प्रारंभिक शिक्षा मरोड़ा गाँव में ही हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा के दौरान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों ने युवा सुंदरलाल के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। गांधीवादी दर्शन, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय के सिद्धांत उनके जीवन के मार्गदर्शक बन गए। बहुगुणा जी ने श्रीदेव सुमन और ठाकुर सेन नेगी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी प्रेरणा ली। इन महान व्यक्तित्वों ने उनमें सामाजिक कार्य और देश सेवा की भावना जागृत की। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के व्यावहारिक पहलुओं और सामाजिक संघर्षों को भी समझने लगे थे।
3: मात्र 13 वर्ष की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। 1940 के दशक में जब देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तब युवा बहुगुणा ने टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने राजशाही के खिलाफ जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यह कारावास उनके संकल्प को और मजबूत करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जन सेवा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को आत्मसात किया।
1: सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका विवाह विमला बेंजवाल से हुआ। विमला जी स्वयं एक प्रगतिशील विचारों वाली महिला थीं और उनमें भी सामाजिक कार्यों के प्रति गहरी रुचि थी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो समान विचारधाराओं का मिलन था। विमला बहुगुणा ने अपने पति के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में व्यस्त थे, तब विमला जी ने महिलाओं को संगठित करने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि एक सफल आंदोलन के पीछे पति पत्नी की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।
3: और दोनों ने मिलकर सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। विमला जी की मृत्यु 2011 में हुई, जो बहुगुणा जी के लिए एक बड़ी क्षति थी। स्वतंत्रता के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने सामाजिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी समाज में अनेक कुरीतियां और असमानताएं मौजूद हैं। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम करना शुरू किया।
1: बहुगुणा जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए। उन्होंने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने समझा कि गरीबी और अशिक्षा समाज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और इन्हें दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर विनोबा भावे के साथ मिलकर काम किया। भूदान और ग्रामदान आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने यह समझा कि पहाड़ों की समस्याएं केवल सामाजिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय भी है।
3: 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1973 में मंडल गांव में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाया। बहुगुणा जी ने इस स्थानीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने चिपको आंदोलन को एक दर्शन, एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनका नारा क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार बेहद लोकप्रिय हुआ और ये पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र बन गया।
1: बहुगुणा जी ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में पैदल यात्राएं की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं देते बल्कि वे मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और पूरी पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हैं। चिपको आंदोलन की सफलता से वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिमालयी क्षेत्र में 15 साल के लिए हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था।
3: चिपको आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ एक लंबा और कठिन संघर्ष शुरू किया। उन्होंने इस परियोजना को पारिस्थितिकीय रूप से विनाशकारी और भूकंप की दृष्टि से खतरनाक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बांध भागीरथी नदी को नष्ट कर देगा और हजारों लोगों को भी विस्थापित करेगा। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरोध में कई उपवास और सत्याग्रह किए। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया। 1995 में उन्होंने 45 दिनों का उपवास किया, जो उनके जीवन के सबसे लंबे उपवासों में से एक था।
1: हालांकि टिहरी बांध का निर्माण रोका नहीं जा सका और 2006 में यह पूरा हो गया, लेकिन बहुगुणा जी के संघर्ष ने बड़े बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। उनके प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए। सुंदरलाल बहुगुणा केवल एक आंदोलनकारी नहीं थे बल्कि एक गहरे चिंतक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उनका मानना था कि प्रकृति केवल संसाधनों का भंडार नहीं है बल्कि ये हमारी माता है और उसके साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए।
3: उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा विकास के वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करता है। उन्होंने तर्क दिया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाए, न कि उसे नष्ट करे। उन्होंने औद्योगिक विकास के मॉडल पर सवाल उठाए जो केवल लाभ पर केंद्रित हैं और पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करता है। बहुगुणा जी ने गांधीवादी अर्थशास्त्र और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमालय केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए जीवनदायी है और इसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: बहुगुणा जी ने हिमालय की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। ट्रांस हिमालय पदयात्रा में उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा की और हिमालयी राज्यों में पर्यावरण जागरूकता फैलाई। उन्होंने हिमालय में हो रहे अनियंत्रित निर्माण, सड़क निर्माण की गलत तकनीकों, पर्यावरण के दुष्प्रभाव और खनन गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिमालय की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम पूरे देश को भुगतने होंगे।
3: 2013 में केदारनाथ की त्रासदी के बाद उनकी चेतावनियां सच साबित हुई। उन्होंने बार बार कहा था कि हिमालय में अनियोजित विकास और पर्यावरण की अनदेखी प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देती है। सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली। उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1981 में उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें जीवन रक्षा पदक राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
1: 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। उनके पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को विश्व भर में सराहा गया। विभिन्न देशों के पर्यावरणविदों ने उनसे प्रेरणा ली और उनके आंदोलन के तरीकों को अपनाया। हालांकि उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक टिहरी बांध बनाया जा रहा है, वे कोई सरकारी सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। यह उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
3: भगुना जी का जीवन गांधीवादी सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने और उनकी पत्नी विमला ने अत्यंत सादा जीवन जिया। उन्होंने टिहरी के पास एक छोटे से घर में रहना पसंद किया और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। वे खादी के वस्त्र पहनते थे और स्थानीय सादा भोजन करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति और समाज सेवा में है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जीवन में मूल्यों और सिद्धांतों का महत्व सबसे अधिक है।
1: उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बनाया। लोग उनका सम्मान इसीलिए नहीं करते थे कि वे कोई बड़े पद पर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने में सुंदरलाल बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने समझा कि पहाड़ी समाज में महिलाएं प्रकृति से सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे जल, ईंधन और चारे के लिए रोज जंगलों में जाती हैं। बहुगुणा जी ने महिलाओं को संगठित करने में मदद की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी, बचनी देवी और अन्य अनेक महिलाओं ने जो साहस दिखाया, उसके पीछे बहुगुणा जी और उनकी पत्नी विमला जी का प्रोत्साहन था।
3: उन्होंने महिलाओं को केवल आंदोलन में भागीदार नहीं बनाया, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में भी लाया। इससे न केवल पर्यावरण आंदोलन को बल मिला, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी एक नई दिशा मिली। बहुगुणा जी का मानना था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान दिए और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पारंपरिक गीतों और लोक कला का उपयोग करके पर्यावरण संदेश फैलाया। उनके नारे और गीत इतने लोकप्रिय हुए कि पूरे हिमालय क्षेत्र में बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए। पेड़ बचाओ आंदोलन, हिमालय बचाओ, देश बचाओ जैसे नारे जन जन तक पहुंचे।
1: उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि यदि बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाए तो भविष्य में पर्यावरण संरक्षण स्वाभाविक रूप से होगा। सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन ने विश्व भर के पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और जमीनी स्तर पर जन भागीदारी का उनका मॉडल अनेक देशों में अपनाया गया। केन्या में बांगारी मथाई के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और अन्य कई आंदोलनों पर चिपको का प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखता है।
3: विश्व के अनेक पर्यावरणविद और शोधकर्ता बहुगुणा जी से मिलने और उनके अनुभव सीखने आते थे। उनके आंदोलन की रणनीति और दर्शन पर अनेक शोध पत्र और पुस्तकें लिखी गईं। पर्यावरण अध्ययन में चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गया। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंचों पर भारतीय पर्यावरणीय दर्शन और पारंपरिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक पर्यावरण संकट के समाधान भारतीय परंपरा और दर्शन में मौजूद हैं।
1: अपने जीवन के अंतिम दशकों में बहुगुणा जी ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि विकसित देश अपनी जीवन शैली नहीं बदलते और कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विकासशील देशों से भी अपील की कि वे पश्चिम की गलतियों को न दोहराएं और टिकाऊ विकास का रास्ता अपनाएं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि समय अभी भी है, लेकिन तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
3: वर्ष 2021 में जब COVID-19 की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया, तब 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे प्रभावित हुए। मई 2021 में उन्हें COVID-19 पॉजिटिव पाया गया और उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए चिंता थी, लेकिन शुरुआत में उनकी हालत स्थिर बताई गई। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्याप्त थी। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता सभी उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी बीमारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अनेक नेताओं और हस्तियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड सरकार ने उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई।
1: 21 मई 2021 को शुक्रवार की सुबह एम्स ऋषिकेश में सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी अंतिम सांस ली। 94 वर्ष की उम्र में इस महान पर्यावरणविद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोविड-19 संक्रमण से उनके शरीर ने हार मान ली, लेकिन उनके विचार और संदेश अमर हो गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन दुखद है। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित थे और चिपको आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
3: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पूरे देश के पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार टिहरी में पारंपरिक रीति से किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने भारत में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी और ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी जारी है। उनके चिपको आंदोलन ने यह साबित किया कि सामान्य लोग, विशेषकर महिलाएं, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं और शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं।
1: उनका सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया। उनसे पहले पर्यावरण मुद्दे केवल वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं तक ही सीमित थे। बहुगुणा जी ने इसे जनता का मुद्दा बनाया और दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की गहरी परंपरा है और इस ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में लागू किया जा सकता है।
3: बहुगुणा जी की वैचारिक विरासत बहुआयामी है। उन्होंने विकास के वैकल्पिक मॉडल की बात की जो पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है जब दुनिया टिकाऊ विकास के मॉडल की तलाश में है। उन्होंने सिखाया कि विकास केवल जीडीपी वृद्धि में नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता में मापा जाना चाहिए। उनके विचार आज जलवायु परिवर्तन के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
1: उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की गांधीवादी परंपरा को पर्यावरण आंदोलन में लागू करके दिखाया कि सामाजिक परिवर्तन हिंसा के बिना संभव है। उनका तरीका दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके जीवन काल में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें वर्ष 1981 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया जिसे वैकल्पिक रूप से नोबेल पुरस्कार माना गया, वर्ष 1987 में शेर ए कश्मीर पुरस्कार, वर्ष 1989 में जीवन रक्षा पदक प्रदान किए गए, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाना था जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। अनेक संस्थानों ने उनके नाम पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की।
3: हालांकि बहुगुणा जी को सम्मान और पुरस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कई सम्मान केवल इसीलिए अस्वीकार कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक उनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे तब तक सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। बहुगुणा जी के काम ने भारत में अनेक अन्य पर्यावरण आंदोलनों को भी प्रेरित किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन जो कर्नाटक में प्रभावी था, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन और हाल के वर्षों में आरे फॉरेस्ट बचाओ आंदोलन, इन सभी में चिपको आंदोलन की प्रेरणा देखी जा सकती है।
1: मेधा पाटकर, वंदना शिवा, सुब्रमण्यम स्वामी और अनेक अन्य पर्यावरणविदों ने बहुगुणा जी से प्रेरणा ली। उनके द्वारा स्थापित जमीनी स्तर के आंदोलन का मॉडल आज भी प्रासंगिक है। आज जब भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, वन अधिकार और पर्यावरणीय न्याय की बात होती है तो बहुगुणा जी के संघर्ष और विचार उसकी पृष्ठभूमि में हमें दिखाई देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। जलवायु परिवर्तन के युग में जब दुनिया भर के युवा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब बहुगुणा जी का जीवन और कार्य उन्हें दिशा देते हैं।
3: उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना कैसा होता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची सफलता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए आपके योगदान में है। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के संघर्ष में भी बहुगुणा जी की परंपरा की झलक दिखती है। वे आज के युवाओं को यह संदेश देते हैं कि आवाज उठाना, असहज सवाल पूछना और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है।
1: बहुगुणा जी के जीवन और कार्य पर अनेक पुस्तकें, वृत्तचित्र और शोध पत्र लिखे गए हैं। चिपको मूवमेंट पर दर्जनों शैक्षणिक अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें बहुगुणा जी की केंद्रीय भूमिका का विश्लेषण है। अनेक फिल्मकारों ने उन पर वृत्तचित्र बनाए। चिपको, अ मूवमेंट टू सेव द ट्रीज और अन्य डॉक्यूमेंट्री उनके संघर्ष को दर्शाती हैं। उनकी जीवनी और उन पर लिखी गई पुस्तकें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अनेक लेखकों ने उनके जीवन से प्रेरित कहानियां और कविताएं लिखी हैं। उनका चरित्र भारतीय सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
3: यद्यपि बहुगुणा जी कभी सरकार में नहीं रहे, फिर भी उनके आंदोलन ने भारत की पर्यावरण नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अनेक अन्य कानूनों की पृष्ठभूमि में चिपको जैसे आंदोलनों का योगदान था। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है और इसमें जन भागीदारी की बात कही गई है। यह बहुगुणा जी के आंदोलन का ही परिणाम है कि आज भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इन सभी में चिपको आंदोलन और बहुगुणा जी के विचारों का असर देखा जा सकता है।
1: सुंदरलाल बहुगुणा अमर है। उनके विचारों में, उनके आंदोलन में और उन लाखों पेड़ों में जो उनके प्रयासों से बचाए गए, वे हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, हर उस युवा में जो बेहतर भविष्य का सपना देखता है और हर उस दिल में जो प्रकृति से प्रेम करता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम धरती के अतिथि हैं, न कि मालिक, और एक जिम्मेदार अतिथि की तरह हमें इस सुंदर ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। यही सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी विरासत है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना। उनके विचार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा बनकर सदैव जीवित रहेंगे।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। आज का ये कार्यक्रम सुंदरलाल बहुगुणा पर केंद्रित था। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का था। और इसके साथ ही आज का भारत विभूति कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 MHz पर।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, वक्त है परिक्रमा का, आइए सुनते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। नौतपा के दूसरे दिन शहर में पारा 43.2 डिग्री रहा। आज भी लू का येलो अलर्ट जारी है और 6 जिलों में रेड अलर्ट बताया गया है। भोपाल इस बार प्री मानसून गर्मी के सबसे आक्रामक और लंबे दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 12 मई से 26 मई के बीच 15 दिनों में से 14 दिन शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। गर्मी से बचने के लिए यदि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। लू के मौसम में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गर्मी में थोड़ी सावधानी आपको सुरक्षित रख सकती है।

रंगमंच और परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का समापन आज होगा। नृत्य नाटिका वंदे मातरम और राख का मंचन उत्कल भवन जवाहर चौक में आज शाम 6:30 बजे से किया जाएगा।

वीर भारत न्यास द्वारा बुधवार से यानी आज 27 मई से 2 जून तक भारत भवन में जल संरक्षण और पंचमहाभूतों पर केंद्रित सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय आयोजन में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि के संरक्षण पर विमर्श होगा।

यदि आपका मन नौकरी में नहीं लगता बल्कि खुद की कंपनी यानी स्टार्टअप खोलने में है, तो आपकी इसी कश्मकश को दूर करने के लिए मैनिट भोपाल एक स्कीम लेकर आया है। पहली बार मैनिट सिखाएगा स्टार्टअप समर इंटर्नशिप प्रोग्राम और फंडिंग के तरीके। ये एक महीने का प्रोग्राम होगा। इसकी शुरुआत 15 जून से होगी और इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख है 5 जून।

बढ़ती गर्मी के कारण प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षा 15 दिन आगे बढ़ा दी गई है। फैल हुए विद्यार्थियों के लिए अब यह परीक्षा 1 जून की बजाय 16 जून से आयोजित की जाएगी। मुंह के कैंसर और दांतों की बीमारियों की समय पर पहचान के लिए 24 मई से 5 जून तक विशेष निशुल्क दंत और ओरल कैंसर जांच शिविर चल रहा है। आप भी यहां जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं।

ये थी आज की परिक्रमा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम काव्य कुंजन। इसके अंतर्गत आज सुनिए रश्मि रथी का भाग एक। कलाकार हैं भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, आज हम जिस कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो किसी साधारण कवि की रचना नहीं है, ये उस सृजनकर्ता की आवाज है जिसने कविता को केवल लिखा नहीं, उसे जिया, उसे जंग की तरह लड़ा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में केवल एक नाम नहीं है, वे चेतना है, वे युग की धड़कन है। उनकी कविता में शब्द नहीं है, शस्त्र हैं जो अन्याय के विरुद्ध उठते हैं और मनुष्य के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। दिनकर जी की काव्यधारा में ओज की गर्जना है तो वहीं करुणा की गहरी धारा भी है। वे वीरता के कवि हैं पर उनकी वीरता पत्थर सी कठोर नहीं, वो संवेदना से सिंचित है और रश्मि रथी इसी संवेदनशील ओज का सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे मानवीय स्वर है। ये महाकाव्य केवल कर्ण की कथा नहीं कहता, ये उस हर व्यक्ति की व्यथा है जो योग्य होते हुए भी पहचान से वंचित रह जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी की।
3: रश्मि रथी की,
2: रश्मि बहुनात्र किम मुक्तेन, संक्षेपात शृणु पांडव, त्वत्समम त्वाद विशिष्टम वाकर्णम मन्ये महारथम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में मेरी बात सुनो। मेरे विचार में कर्ण या तो तुम्हारे समान है या फिर तुमसे भी श्रेष्ठ, और इसीलिए मैं उसे महारथी मानता हूं।
4: यह श्लोक कर्ण के लिए श्री कृष्ण की सबसे स्पष्ट और निर्भीक स्वीकृति है। कृष्ण यहाँ तुलना करते भी हैं और तोड़ भी देते हैं, कर्ण को किसी नीची श्रेणी में नहीं रखते। त्वत् समम कहकर वे उसे अर्जुन के समकक्ष रखते हैं और त्वाद विशिष्टम कहकर उसकी अद्वितीयता को स्वीकार करते हैं। यही भाव दिनकर के रश्मि रथी की आत्मा है। कर्ण को समाज ने जो नहीं दिया, कृष्ण ने उसे शब्दों में दे दिया।
2: हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्र रक्षक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था हृदय था युधिष्ठिर, कर्ण का श्रद्धा युत हृदय था। अर्थात कर्ण का हृदय बिल्कुल निष्कपट और पवित्र कर्मों से युक्त था, वो संकट में पड़े लोगों की रक्षा करने वाला था, वो अद्वितीय दानी था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, कर्ण का हृदय श्रद्धा, त्याग और महानता से भरा हुआ था।
4: तो आइए श्रोताओं, काव्य गुंजन के इस विशेष अंक में हमारे साथ चलिए, जहां हर शब्द एक दीप है और हर भाव एक अनंत यात्रा। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं इस अद्भुत महाकाव्य को जिसके रचयिता महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्रोताओं, ये केवल काव्य गाथा नहीं बल्कि तेज, तप, त्याग और आत्मगौरव का जीवंत महागान है। मानो कर्ण के शब्दों की गूंज आपसे कुछ कहना चाह रही हो।
5: मैं कौन हूं, एक नाम या एक प्रश्न, एक जन या निरंतर किया गया संघर्ष, यदि मनुष्य को केवल उसके कुल से जाना जाए तो फिर कर्म का अर्थ क्या रह जाता है? और यदि पहचान जन्म से तय हो तो पुरुषार्थ किस लिए? मैं कर्ण हूं जिसका जन्म लोक लज्जा का बोझ बना और जीवन स्वयं को सिद्ध करने की साधना। मेरे पास वंश की विरासत नहीं पर शर्म की स्मृति है। मेरे माथे पर नाम नहीं लिखा पर मेरी भुजाओं में भाग्य को बदलने की शक्ति धड़कती है। मुझसे मेरी जाति पूछी गई पर मैंने अपने मौन से उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य की सच्ची पहचान शब्दों में नहीं उसके कर्म में अंकित होती है। मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं उस समाज से संवाद करने आया हूं जो जन्म को धर्म मान बैठा है और पुरुषार्थ को अपराध। आओ मेरे साथ चलो, किसी युद्ध की ओर नहीं बल्कि उस अनंत संघर्ष की ओर जहां हर युग में मनुष्य को पहले मनुष्य बनने के लिए लड़ना पड़ता है। यही है मेरी यात्रा, यही है मेरी वेदना और यही है रश्मिरथ।
4: आइए श्रोताओं सुनते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का भाग एक।
2: जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास।
4: रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य के किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो श्रोताओं यह केवल कर्ण की कथा नहीं है, यह उस प्रश्न की कथा है जो हर युग में मनुष्य से पूछा जाता है। क्या मनुष्य को बड़ा उसका जन्म बनाता है या उसके भीतर जलता हुआ तेज? दिनकर कहते हैं जहां भी आग जले वह पूज्य है। गुणों की जड़ नहीं पूछी जाती, शक्ति और करुणा पहचानी जाती है। कर्ण इसीलिए महान नहीं कि वह सूर्य पुत्र था बल्कि इसलिए कि पीड़ा में पलकर भी उसने दया और दान को नहीं छोड़ा। उसने ऊंच नीच जाति गोत्र नहीं माने, उसने अपने कर्म को ही अपना परिचय बनाया और शायद यही कारण है कि इतिहास में कर्ण की रेखा राजाओं से नहीं न्याय से खींची गई है। अब अगला सर्ग हमें उसी कर्ण के और निकट लेकर जाएगा जहां वीरता से पहले मनुष्य होने की परीक्षा खड़ी है। नगर के शोरगुल, राजमहलों की चहल पहल और लोगों की निगाहों से दूर कर्ण एकांत में तप रहा है। यह तप केवल अस्त्र विद्या का नहीं, आत्मसंयम, श्रम और धैर्य का है। वह किसी की कृपा से नहीं, अपने पुरुषार्थ से निखर रहा है। जैसे जंगल में खिला वह फूल, जिसे देखने कोई नहीं आता, पर जिसकी सुगंध सच्ची होती है। आइए हम प्रथम सर्ग के भाग दो की तरफ चलते हैं, उसका काव्य पाठ सुनते हैं, जहां जहां कर्ण पहली बार अपनी धनुष टंकार से समाज को आईना दिखाता है।
2: अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुरसे दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं, आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार।
4: सभा एकाएक मौन हो जाती है, धनुष की एक एक टंकार के साथ वंश का घमंड डगमगाने लगता है, जन्म का अभिमान दरकता है और तालियों से उपजा सस्ता यश अपनी ही गुफापन को उजागर कर देता है। इसी क्षण से प्रथम सर्ग की अगली यात्रा आरंभ होती है, जहां कर्ण केवल रणभूमि का योद्धा नहीं रह जाता, बल्कि समाज द्वारा स्थापित मानकों से प्रश्न करने वाला एक सजग और जागृत विवेक बनकर सामने आता है। अब श्रोताओं, आइए उस उत्तराधिकारी क्षण की ओर रुकें, जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं। सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग तीन को।
2: फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ बताओ, बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला,
6: जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, क्लानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान।
4: श्रोताओं, मनुष्य इस धरती पर सदियों से सत्ता और पहचान के द्वंद से जूझता आया है। यहाँ अक्सर कर्म से पहले परिचय मांगा जाता है और प्रतिभा से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। धर्म का नाम लिया जाता है, पर उसी की आड़ में शोषण भी होता है और जातियों के इतने सकरे खांचे बना दिए जाते हैं कि उसमें असंख्य भावनाएं घुट कर रह जाती हैं। इन्हीं भावनाओं से आहत मानो कर्ण स्वयं कह रहे हो।
5: मेरी पीड़ा केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की आवाज है जिसे योग्य होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिली, जो मंच के सामने तो खड़ा रहा पर मंच पर चढ़ने से पहले उससे उसका जन्म पूछ लिया गया। रश्मिरथी हमें यह चेतावनी देती है कि जब समाज पहचान को कर्म से बड़ा मान लेता है तो वो अपने ही भविष्य को अपमानित करता है, क्योंकि प्रतिभा को रोका जा सकता है पर इतिहास को नहीं। और यहीं से आरंभ होता है वो क्षण जहां मेरी चुनौती केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे से है।
4: कर्ण का तेज अब शब्दों में सीमित नहीं रहता, वह उसके मौन और उसकी भुजाओं में धधकने लगता है। और तभी जब अन्याय अपनी अंतिम सीमा लांघता है, सभा में एक स्वर उठता है, ऐसा स्वर जो मित्रता भी है, राजनीति भी और विद्रोह भी। ये वही क्षण है जब अपमान के सामने सम्मान की पहली ढाल खड़ी होती है और कर्ण के जीवन की दिशा एक निर्णायक मोड़ लेने लगती है। श्रोताओं, हम आपको उसी क्षण की ओर लिए चलते हैं जहां नियति और साहस आमने सामने खड़े हैं। आइए अब हम सुनते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ।
6: पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान।
2: कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सहना सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा श्वपच चर्मकार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार।
4: श्रोताओं, यह वह क्षण है जहां सभा केवल राज दरबार नहीं रह जाती, वह समाज का कठोर दर्पण बन जाती है। यहां तलवारों से पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और पराक्रम से पहले पहचान। यह प्रतिभा को उसके तेज से नहीं, उसकी जाति से आंका जाता है और योग्यता से पहले वंश का लेखा जोखा खोला जाता है। अन्याय यहां चिल्लाता नहीं, वह शास्त्र बनकर, नियम बनकर, मर्यादा का मुखौटा ओढ़कर खड़ा होता है और उसी की ओट में अपमान को न्याय का नाम दे दिया जाता है। ये केवल उस युग की कथा नहीं, आज भी जब समाज पद, पहचान, जाति और सत्ता के तराजू पर मनुष्य को तौलता है, तब हर कर्ण इसी पीड़ा से गुजरता है। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है मानो सभा नहीं, स्वयं इतिहास ठहर गया हो और उस मौन को चीरता हुआ अब कर्ण स्वयं कह उठता है।

0: पहली बार मैं स्वयं से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? वो जिसे उसके तेज से पहचाना जाना चाहिए, या वो जिसे नाम और जन्म के तराजू पर तौला जाता है? मेरे हाथों में धनुष है, ललाट पर सूर्य का तेज, फिर भी मेरी पहचान से पहले मेरी जाति पूछी जाती है। क्या वीरता भी किसी वंश की मोहताज होती है? इस सभा में मेरी भुजाएं नहीं कांपी, पर मन अवश्य थर्राया है, अन्याय से नहीं बल्कि उस सत्य से जिसे सब जानते हैं, पर स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं। यदि सम्मान मांगना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं, और यदि तेज ही मेरी जाति है तो आज इस अपमान की अग्नि में तपकर मैं स्वयं को पहली बार पूरी तरह पहचान रहा हूं।
1: श्रोताओं, इसी सन्नाटे में जहां नियम अन्याय का कवच बन चुके हैं और मौन कायरता का साथी, सभा के बीच से एक स्वर उठता है। यह स्वर केवल किसी राजकुमार का नहीं है, यह उस व्यक्ति का है जो पहली बार सत्ता को नहीं अन्याय को चुनौती देने जा रहा है। श्रोताओं, यह क्षण केवल कर्ण के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, यह उस व्यवस्था के विरुद्ध पहला सार्वजनिक प्रतिरोध है जो प्रतिभा को जन्म से बांधना चाहती है, और यही इसी एक स्वर के साथ मित्रता जन्म लेती है, राजनीति आकार लेती है और इतिहास एक नया मोड़ लेने को विवश हो जाता है।

0: श्रोताओं, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वह विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है। आगे हम प्रथम सर्ग के अंतिम भागों 5, 6 और 7 का काव्य पाठ सुनेंगे। यह काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी आपके रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
2: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन में रश्मि रथिका पाहक एक। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर।
2: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। भारत के महान खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत नार्लिकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में 19 जुलाई 1938 को हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष थे। इसके बाद वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर जयंत नार्लिकर की शिक्षा वाराणसी में हुई। उनकी माता तत्कालीन बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक थीं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य से भी उनका लगाव था। वे बहुत शालीन, सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं।
3: श्रोताओं, युवा डॉक्टर नार्लिकर असाधारण प्रतिभा के धनी थे। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में वे हमेशा प्रथम रहते थे। गणित उनका प्रिय विषय था। इसके अलावा किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। सन 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। उनके विषय गणित और खगोल भौतिक थे।
2: उनके पिताजी उन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते थे। इंग्लैंड से पढ़कर लौटे लोगों ने उन्हें आगाह करते हुए आत्मसंतुष्ट न होने की सलाह दी थी। उन लोगों के अनुसार इंग्लैंड का जीवन बड़ा ही कठिन था, परंतु कठिन परिश्रम के बल पर डॉक्टर नार्लिकर पूरी तरह सफल रहे। उनके पिता से और विशेष रूप से उनके मामा डॉक्टर वसंत राव हुजूर बाजार से मिले परामर्श से उनका काम आसान हो गया।
3: उनके माता पिता के अलावा उनके शिक्षक और उन्हें सलाह देने वाले फ्रेड हॉयल का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर उनके असाधारण परिणाम ने उनको छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यहां उन्होंने केवल 2 वर्ष में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर ली।
2: संयोग से खगोल भौतिकी के विश्वविख्यात अध्यापक उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उनका नाम था फ्रेडरिक होयल। लोग उन्हें फ्रेड होयल भी कहते थे। होयल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे और खपिंडो यानी सेलेशियल बॉडीज की गति और स्थिति पर अनुसंधान करा रहे थे। डॉक्टर नार्लिकर ने फ्रेडरिक होयल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने के लिए पंजीकरण कराया और अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। होयल ने भी डॉक्टर नार्लिकर को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। सन 1963 में डॉक्टर नार्लिकर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। वे कैम्ब्रिज में सन 1957 से 1962 तक रहे।
3: श्रोताओं, डॉक्टर नार्लिकर ने 15 वर्ष तक विदेश में रहने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। 22 वर्ष की आयु में वे रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के सदस्य हो गए। उन्हें किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो भी नियुक्त किया गया। उनके पिता भी इस संस्थान के सदस्य थे। उनकी पीएचडी के शोध प्रबंधन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों और अलग अलग खपिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण और दबाव, सृष्टि के निर्माण और अन्य दूसरे विषयों के बारे में अनुसंधान शामिल थे। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत के विषय में भी विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अनेक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वह स्थिर है। उन्होंने इसे स्थिर स्थिति यानी स्टेडी स्टेट कहा। इस सिद्धांत ने इस विषय पर नया प्रकाश डाला।
2: फ्रेड होयल के साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सादृश्य सिद्धांत यानी कन्फॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। डॉक्टर नार्लिकर और फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर कार्य किया, जिसमें स्थिर स्थिति सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और विद्युत गति यानी इलेक्ट्रो डायनामिक्स शामिल थे। उन दोनों ने ये मत प्रतिपादित किया कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में विद्यमान अन्य शक्तियों के बल का पदार्थ के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वो पदार्थ की आकृति और आकार को भी प्रभावित करता है।
3: श्रोताओं, अंतरिक्ष के पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनेक अनुसंधानों को असाधारण माना जाता है। यूरोप में उन्हें अनेक संस्थानों से पुरस्कार और पदक मिले। सन 1969 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर नार्लिकर और प्रोफेसर फ्रेड होयल को भारत आकर के भाषण देने के लिए आमंत्रित किया।
2: सन 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडम अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले ये प्रतिष्ठित अवार्ड 3 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जा चुका था। ये अवार्ड सन 1944 में डॉक्टर होमी भाभा को, सन 1948 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को और 1961 में डॉक्टर हुजूर बजरा को प्रदान किया गया था।
3: श्रोताओं, यह अवार्ड गणित, खगोल, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान के लिए हर 2 वर्ष में डॉक्टर जेसी एडम की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एडम एक असाधारण खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सन 1864 में नेपच्यून ग्रह के विद्यमान होने की भविष्यवाणी की थी।
2: डॉक्टर नार्लिकर का विवाह सन 1966 में मंगला सदाशिव राजवाड़े के साथ हुआ। 1969 में जब वे भारत वापस आए, तब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ

0: पर अनुसंधान जारी रखा। टैकियॉन ऐसे कण हैं जो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गति से चलते हैं। डॉक्टर नार्लकर के मतानुसार कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल टैकियॉन कणों के आधार पर होते हैं। वे बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और समाविष्ट कर लेते हैं और अत्यधिक दबाव के साथ ब्लैक होल की सतह को संकुचित कर देते हैं।
1: भारत आने के बाद डॉक्टर नार्लकर ने एक और कार्य किया, लोगों में विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर नार्लकर ने अपनी मातृभाषा मराठी में आकाशाशी जड़ले नाते यानी आकाश से जुड़ा नाता नामक एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान से संबंधित कहानियां भी लिखी। उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी किया गया है। डॉक्टर नार्लकर कुशल विज्ञान कथा लेखक हैं।
0: श्रोताओ, सितंबर 1988 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें खगोल विज्ञान और नाभिकीय भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र यानी एस्ट्रोनॉमी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से यह केंद्र बना। डॉक्टर नार्लकर इसके प्रथम निदेशक बने और उन्होंने होमीभाभा प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। सन 1988 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में खगोल विज्ञान से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया।
1: 10 जनवरी 1989 को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने डॉक्टर नार्लकर को सन 1988 का वेणु बापू मेमोरियल अवार्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस पुरस्कार में 25,000 रुपए नकद और एक पदक प्रदान किया जाता है। सन 1990 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार और सन 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया।
0: 12 मार्च 2003 को उन्हें यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 प्रदान किया गया। तो श्रोताओं, ये था जीवन परिचय डॉक्टर नार्लकर का। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयंत नार्लकर पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी सियालकोट आए। वहां उन्होंने लगातार व्याख्यान दिया। उस समय की घटनाओं का वर्णन श्री गुडविन ने किया है। वे मद्रास से जम्मू आकर स्वामी जी से मिले थे और साथ साथ भ्रमण किए थे। उन्होंने लिखा है,
1: यद्यपि स्वामी जी विवेकानंद के भग्न स्वास्थ्य का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, तथापि वो पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। इस बार उनका कार्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम। कश्मीर में उन्होंने कई सप्ताह बिताए और वहां के महामान्य महाराजा ने स्वामी जी के वक्तव्य पर आकृष्ट होकर उन्हें वचन दिया है कि स्वामी जी यदि उस राज्य में किसी व्यवहारिक योजना को रूपायित करना चाहे तो उन्हें महाराजा की सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद कुछ दिन जम्मू में रहकर उन्होंने वहां के विशेष श्रोताओं के समक्ष हिंदी में व्याख्यान दिया। जम्मू से सियालकोट जाकर 31 अक्टूबर के प्रातःकाल लाला मूलचंद MALLB महाशय के घर में आतिथ्य ग्रहण किया। यहां पर उनके दो भाषणों का आयोजन हुआ था, एक अंग्रेजी में 31 अक्टूबर की शाम को और दूसरा हिंदी में। दोनों व्याख्यानों का और यहां तक कि इस काल के उनके समस्त व्याख्यानों का एक सामान्य वक्तव्य ये था कि धर्म के नाम से परिचित होने के लिए उसे व्यावहारिक रूप से ग्रहण करना होगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी दिन पर दिन धर्म के इसी पक्ष पर अधिकाधिक बल दे रहे हैं और वो जिन जिन स्थानों को जा रहे हैं वहां वहां के स्थानीय प्रयोजन के अनुसार तथा वहां के लोगों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करके अपने मत को रूपायित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ सियालकोट में एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया और उनके वहां 2 दिन निवास के फलस्वरूप उस प्रस्ताव को कार्यकारी बनाने के लिए लाला मूलचंद को सचिव बनाकर नगर के प्रभावशाली लोगों की एक कमेटी गठित हो गई।
2: 5 नवंबर को स्वामी जी अपनी टोली के साथ रवाना होकर सियालकोट से लाहौर पहुंचे। वहां भी उनके भाषणों का सिलसिला चलता रहा।
0: गुडविन महोदय ने और भी लिखा है,
1: शुक्रवार की शाम को पुरानी हवेली के प्रांगण में उन्होंने हमारी समस्याएं विषय पर एक भाषण दिया। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे। जितने लोग आए थे उन सभी के लिए उस प्रांगण में यथेष्ट स्थान नहीं था और बहुत से लोगों को निराश करना पड़ेगा ये सोचकर ऐसा लग रहा था कि शायद सभा ही ना हो सके। कम से कम 2000 श्रोताओं को लौटा देने के बाद भी पूरे 4000 श्रोताओं को एक बड़ा मनोहारी व्याख्यान सुनने को मिला। परवर्ती मंगलवार को प्रोफेसर बोस के बंगाल सर्कस के पंडाल में स्वामी जी का भक्ति पर व्याख्यान सुनने को एक विशाल श्रोता मंडली एकत्र हुई थी। इसके परवर्ती शुक्रवार 12 नवंबर को तृतीय व्याख्यान ने विपुल सफलता अर्जित की। इस भार व्यवस्था का पूरा भार लिया था लाहौर के 4 महाविद्यालयों के छात्रों ने और वो सर्वांग सुंदर बन पड़ा था। श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि कोई असुविधा उत्पन्न हो, तथापि इसमें लाहौर के सभी श्रेणियों के चुने हुए लोग उपस्थित थे। उक्त संध्या को व्याख्यान का विषय था वेदांत। स्वामी जी ने 2 घंटे से भी अधिक समय तक अद्वैतवाद तथा भारतीय धर्म के विषय में एक ऐसा भाषण दिया जो अति उच्च कोटि का हुआ था।
2: गुडविन महोदय खुद उन भाषणों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने आगे कहा,
1: स्वामी जी के भारत में अब तक हुई सभी व्याख्यानों में सर्वोत्तम इस व्याख्यान का प्रत्येक शब्द शक्तिमय था। इस व्याख्यान के फलस्वरूप बड़े उत्साह की सृष्टि हुई। अतएव लाहौर के जो छात्र सर्वदा स्वामी जी की सेवा में रहते थे उनके बीच अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत करने के योग्य प्रेरणा जगाने में स्वामी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। वस्तुतः उन्होंने विद्यार्थियों की एक सभा बुलाई जिसमें उनके सुझाव सुनने के पश्चात एक पूर्णता असांप्रदायिक समिति का गठन हुआ और चर्चा के द्वारा उसका कर्तव्य निर्धारित हुआ, गरीबों की सेवा। यथा संभव उन्हें प्रत्येक मोहल्ले से ढूंढ निकालना होगा और निर्धन रोगियों की सेवा शुश्रूषा। तथा निर्धनों के लिए निशा विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी।
0: लाहौर में स्वामी जी जितने दिन रहे प्रायः प्रतिदिन वे विभिन्न संप्रदाय के लोगों से मिलते थे। वहाँ आर्य समाज और सनातन धर्मावलंबियों में काफी झगड़ा था। समाजी मूर्ति पूजा के विरुद्ध टिप्पणी किया करते थे। स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देकर उन्हें समझाया था कि मूर्ति पूजा कैसे और कब शुरू हुई थी और उसका औचित्य क्या है। इसी तरह उन्होंने दोनों दलों में मेल मिलाप करवाया।
2: उन्हीं दिनों लाहौर में ग्रेट इंडियन सर्कस आया हुआ था। एक दिन उसके मालिक बाबू मोतीलाल बोस किसी कार्यवश नागेंद्रनाथ गुप्त के घर आए हुए थे। स्वामी जी ने देखते ही पहचान लिया कि वे उनके बचपन के मित्र हैं और तुरंत उनके साथ दोस्त के समान दिल खोलकर वार्तालाप करने लगे। बचपन में ये दोनों एक ही अखाड़े में व्यायाम करते थे। अपने बाल संगी के अपूर्व तेज प्रतिभा और शक्तिपूर्ण चेहरा देखकर मोती बाबू की आंखें चौंधिया गईं। स्वामी जी जितना ही उनके साथ अपनों के समान व्यवहार और वार्तालाप करने का प्रयास करते वे उतने ही अधिक संकुचित महसूस करते। आखिरकार खूब साहस जुटाकर मोती बाबू ने अत्यंत दीन स्वर में स्वामी जी से कहा,
3: भाई अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? तुम तो इतने बड़े गुरु हो गए हो। हाँ?
4: क्यों रे मोती, तू पागल हो गया है क्या? मैं क्या हो गया हूँ? अरे मैं तो वही नरेन हूँ और तू भी तो वही मोती है, इसमें छोटे बड़े का सवाल ही नहीं उठ सकता।
0: दोनों दोस्त गले लग गए। स्वामी जी के साथ एक अन्य सुविख्यात व्यक्ति की भेंट उल्लेखनीय है। लाहौर के FC कॉलेज के गणित के प्राध्यापक श्रीयुत गोस्वामी स्वामी जी के साथ रहकर बड़े ही उपकृत तथा आनंदित हुए थे। बाद में संन्यास लेकर ये स्वामी राम तीर्थ के नाम से सुपरिचित हुए तथा स्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अमेरिका तथा स्वदेश में वेदांत प्रचार के कार्य में लग गए। इनके अनेक शिष्य तथा भक्त हुए और अपनी प्रकाशित व्याख्यान माला के द्वारा ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय हुए। इन्हीं के नेतृत्व में लाहौर के छात्रों ने स्वामी जी के व्याख्यानों का आयोजन किया था। स्वामी जी के प्रति इतनी असीम श्रद्धा थी और एक दिन उन्होंने स्वामी जी को उनके संगियों सहित अपने घर में निमंत्रित करके भोजन कराया था। इस भोज में श्री गुडविन भी उपस्थित थे। भोज के अंत में स्वामी जी ने एक भजन गाया था।
5: जहां

0: जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहूं होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम।
1: लाहौर में स्वामी जी 10-11 दिन रहे। व्याख्यानों और स्वामी जी के प्रभाव के विषय में प्राध्यापक तीर्थराम ने पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति के नाम एक पत्र लिखा था।
2: तीर्थराम स्वयं ही वेदांती थे, इस कारण स्वाभाविक रूप से भक्तिवाद के प्रति उनका वैसा आकर्षण न था और उस विषय पर स्वामी का व्याख्यान अपूर्व रह जाने से उसका यथोचित प्रभाव भी नहीं हो सका था। इसलिए तीर्थराम के पत्र में उसके विषय में थोड़ी कमी रहने पर भी बाकी व्याख्यानों की उन्होंने उच्च सुर में प्रशंसा की है। पत्र इस प्रकार है।
3: श्री महाराज जी प्रणाम। 10 दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कल देहरादून के लिए रवाना हो गए। उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी में 3 व्याख्यान दिए। स्वामी जी यहाँ सनातन धर्म सभा के अतिथि थे और उन्होंने राजा ध्यान सिंह की हवेली में निवास किया। उनका पहला एवं 3रा व्याख्यान इसी स्थान पर हुआ था। हाँ, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके साथ 3 सन्यासी और एक अंग्रेज महिला सहित 3 इंग्लैंडवासी हैं। इन अंग्रेजों में एक संवाददाता भी थे। अब व्याख्यान के दौरान ये स्वामी जी के भाषण लिख लेते और ब्रह्मवादिन तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के पास उन्हें भेज देते। ये अंग्रेज बड़े सज्जन, बड़े कर्म कुशाल हैं और स्वामी जी के प्रति उनकी विशेष भक्ति भी है। अन्य 2 अंग्रेज भी बड़े धनाढ्य हैं और स्वामी जी का व्यवहार सामान्यतः यही लोग वहन करते हैं। इसी बीच पहला और 2रा व्याख्यान ट्रिब्यून में प्रकाशित हो चुका है। संभवतः 3रा व्याख्यान भी उसी पत्र में मुद्रित होगा। पहले व्याख्यान का विषय था हिंदू धर्म के सामान्य आधार। व्याख्यान कुल मिलाकर अच्छा ही हुआ, यहाँ तक कि अनेक लोगों की दृष्टि में अति उत्तम भी रहा। हाँ।
1: उन्होंने आगे और लिखा है।
3: द्वितीय व्याख्यान का विषय था भक्ति और 3रे व्याख्यान का विषय वेदांत था और ये पता है पूरे 2.5 घंटे तक चला। श्रोतागण इतने तल्लीन हो गए थे कि इसके द्वारा एक ऐसी परिवेश की सृष्टि हुई कि लोग स्थान काल तक की सुध भूल गए थे। और संक्षेप में कहा जाए तो ये एक ऐसी सफलता थी जैसी कदाचित ही कभी दीख पड़ती है। श्रोता काफी संख्या में उपस्थित थे और वे चाहे अंग्रेज रहे हों या मुस्लिम, आर्य समाजी रहे हों या ब्रह्म समाजी, ये सभी के लिए आंखें खोलने वाला सिद्ध हुआ। मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापक भी इससे काफी लाभान्वित हुए थे।
2: तीर्थराम प्रभावित होकर आगे लिखते हैं।
3: व्याख्यान तो अच्छे हुए ही, परंतु इनकी तुलना में अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामी जी का ज्ञान और भी सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ था। आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के नेताओं के साथ उनकी चर्चा के दौरान में उपस्थित था। उन्होंने उन लोगों के प्रश्नों के ऐसे तीक्ष्ण उत्तर दिए कि लोग हतप्रभ होकर लौटे। तथापि मजे की बात तो ये रही कि उन्होंने ऐसे एक भी शब्द को उच्चारण नहीं किया जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। विद्वता भी उनमें यथेष्ट है। उन्हें बहुत से श्रुति वाक्य कंठस्थ हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, शंकर भाष्य, श्री भाष्य, माधव भाष्य का अध्ययन किया है और वल्लभाचार्य के अणुभाष्य को भी उन्होंने पढ़ने का संकल्प लिया है। सांख्य एवं योग में उनकी गहरी पैठ है तथा भगवत गीता के वे अपूर्व व्याख्याता हैं। फिर वे गाते तो अत्यंत मधुर हैं, जिसमें कृपा और प्रीति का भाव है।
2: तीर्थराम जी स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप स्वामी जी को एक सोने की घड़ी उपहार में दी थी। स्वामी जी ने सहर्ष उस घड़ी को स्वीकार किया और कहा,
0: वाह, बहुत सुंदर घड़ी है, इसे तुम ही अपनी जेब में रख लो, मैं तुम्हारी जेब से ही इस घड़ी का उपयोग करूंगा।
1: तीर्थराम समझ गए स्वामी जी को कोई भी लालच छू नहीं सकता, सोना भी नहीं। लाहौर की एक और घटना के बारे में सुनिए। श्रीयुत नागेंद्रनाथ गुप्त की स्मृति में कथा से भी लाहौर की 2 छोटी पर रोचक घटनाओं का पता चलता है। स्वामी जी और नागेंद्र बाबू एक दिन नियंत्रित होकर श्रीयुत बख्शी जय श्री राम के घर गए। जय श्री राम स्वामी जी से पहले ही धर्मशाला नामक स्थान में मिल चुके थे। उस घर में पहुंचते ही गृह स्वामी ने स्वामी जी को धूम्रपान हेतु एक सुंदर नया हुक्का दिया, परंतु हुक्के को मुंह में लगाने के पूर्व ही स्वामी जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा,
0: यदि जाति भेद के विषय में आपकी दृढ़ आस्था हो तो मुझे अपना हुक्का मत दीजिएगा, क्योंकि कल यदि कोई और भी धूम्रपान के लिए मुझे अपना हुक्का दे तो मैं आनंद पूर्वक उसे पीऊंगा। कारण यह है कि मैं जाति पाति की सीमा के परे जा चुका हूँ।
1: गृह स्वामी जी ने सविनय कहा कि स्वामी जी के धूम्रपान करने पर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
2: एक दिन शाम को विचिंतित मुख मुद्रा में नगेंद्र बाबू के पास आकर बोले, यदि इससे देश का किसी प्रकार से कल्याण हो तो मैं प्रसन्न चित्त से जेल जाने को तैयार हूँ। स्वामी जी स्वदेश लौटने के बाद उस गौरव का उपभोग करने के बजाय अगर आवश्यकता हो तो आत्म बलिदान के द्वारा भी देश का मंगल करने की सोच रहे थे, और अंग्रेज सरकार के अत्याचार के फलस्वरूप अनेक वरेण्य देशभक्तों को कारावास स्वीकार करना पड़ रहा था। ये सोचकर उनका चित्त उस समय दुख के भार से पीड़ित था। प्रसंगतः आपको जानकारी दे दूं कि 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक बंबई सरकार द्वारा राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिए गए थे, और अदालत में विचार होने के बाद उन्हें 1.5 वर्ष का कारावास का दंड मिला था। इन्हीं दिनों स्वामी जी जापान तथा जापानियों के देश प्रेम की खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे,
0: उनका स्वदेशी हमारे लिए धर्म है, उनकी राष्ट्रीय जनध्वनि है, महामहिम जापान दीर्घजीवी हो, उनके लिए सर्वप्रथम और सबसे ऊपर स्वदेश का स्थान है। स्वदेश के सम्मान तथा अखंडता की रक्षा के लिए उनके द्वारा कोई भी बलिदान असंभव नहीं है।
1: लाहौर के बाद स्वामी जी की सिंध जाने की बड़ी इच्छा थी, परंतु विविध कारणों से उनका वहां जाना नहीं हो सका और उन्होंने लाहौर से देहरादून की यात्रा की। उन्होंने एक पत्र में देहरादून जाने के कारण बताए थे।
0: प्रथमतः तो कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर, जो इंग्लैंड से आकर पिछले लगभग 9 महीनों से मेरे साथ घूम रही हैं, देहरादून में जमीन खरीद कर एक अनाथालय बनाने के लिए विशेष उत्सुक हैं। द्वितीय, मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ते में एक मठ बने, पर उसके संबंध में भी मैं कुछ नहीं कर सका हूं। इसके अतिरिक्त देशवासियों ने भी जो पहले मठ को सहायता देते थे वो बंद कर दी है। उनकी धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी धन लेकर लौटा हूं। इतना ही नहीं, इस बार श्री राम कृष्ण का महोत्सव तक होना कठिन है, क्योंकि विलायत होने के कारण रासमणि के उत्तराधिकारी मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि राजपूताना आदि में मेरे जो 2-4 मित्र हैं उनसे मिलकर कलकत्ते में एक केंद्र बनाने के लिए प्रयास करना। कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो जाने पर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, तभी मुझे विश्वास होगा कि जीवन भर दुख कष्ट उठाकर मैंने जो भी कार्य किया है वो मेरे शरीर त्याग के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा। आज ही देहरादून जा रहा हूँ।
2: देहरादून से स्वामी जी राजपुताना की ओर अग्रसर हुए। उनका गंतव्य स्थान खेतड़ी था। राजा अजीत सिंह उस समय तक इंग्लैंड के राज दरबार से लौट आए थे। बंबई में उनके जहाज से उतरने पर स्वामी जी के निर्देशानुसार रामकृष्ण मिशन की ओर से उनकी संवर्धना की गई। उस समय राजा अपने गुरुदेव का दर्शन करने को आकुल थे और आचार्य भी अपने सुयोग्य शिष्य को दर्शन देने के लिए उत्सुक थे। अतः वे सहारनपुर, दिल्ली, अलवर तथा जयपुर होते हुए खेतड़ी की ओर चल पड़े। दिल्ली में उन्होंने मात्र 4-5 दिन ही निवास किया।
1: दिल्ली से स्वामी जी 1 दिसंबर की ट्रेन से अलवर की ओर चले। चारों ओर फैले बालू के ढूंढों से बीच से गुजरते हुए अंत में ट्रेन जब रेवाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो पता चला कि खेतड़ी नरेश के लोग स्वामी जी को ले जाने के लिए पालकी, ऊंट, घोड़े आदि विविध प्रकार के वाहनों सहित वहां उपस्थित हैं। खेतड़ी उन दिनों जयपुर के अधीन एक सामंती राज्य था। जयपुर से रेगिस्तान के रास्ते उसकी दूरी लगभग 90 मील थी, परंतु रेवाड़ी से ये दूरी लगभग 20 मील कम थी। राजा अजीत सिंह ने इस छोटे मार्ग को ही स्वामी जी की यात्रा के लिए उत्तम समझा था।
2: खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी महाराजा के अतिथि के रूप में रहे। पुरानी बातों को याद कर स्वामी जी ने कहा था,
0: यहीं पर एक दिन मैं साधारण फकीर के वेश में आया था। तब राजकीय रसोईया बड़ा नाक भों चढ़ाकर शाम को थोड़ा सा कुछ खाने को देता था, और अब पलंग के नर्म गद्दे पर सोने की व्यवस्था, कितने ही लोग हाथ जोड़े सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात कितनी सत्य है, अवस्था पूज्यते राजन, ना शरीरम शरीरिणाम।
1: खेतड़ी नरेश ने स्वयं ही 12 मील पथ अग्रसर होकर स्वामी जी की चरण वंदना की और उन्हें अपने 6 घोड़ों के रथ पर बैठाकर राजधानी ले आए। खेतड़ी राज्य में उस समय महासमारोह चल रहा था। राजा केवल कुछ दिनों पूर्व ही यूरोप भ्रमण कर स्वदेश लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में प्रजा ने उनके अभिनंदन और अपने हर्षोल्लास के लिए महोत्सव का आयोजन किया था। इस पर राजगुरु के आगमन से सबका उत्साह दुगना हो गया। इसी कारण इस उपलक्ष्य में वहां दिन भर भोज, आतिशबाजी, आलोक सज्जा, संगीत आदि विविध प्रकार के समारोह का आयोजन चलता रहा। राज्य के विशिष्ट जन भी उनका सत्कार करने को एकत्र हुए। सम्मेलन के स्थान पर स्वामी जी और राजा के उपस्थित होने पर दोनों की अभ्यर्थना के उपरांत अभिनंदन पत्र दिया गया।
2: स्वागत सभा में खिचड़ी के लोगों ने अपनी परंपरागत रीति के अनुसार 5 थालियों में स्वर्ण मुद्राएं भरकर राजा को उपहार दिया। फिर राजा ने चढ़ावे का अधिकांश भाग राज्य में शिक्षा कार्य हेतु दान कर दिया। राजा के भेंट देने के उपरांत उपस्थित सभी राज कर्मचारी तथा प्रजावृंद एक एक कर स्वामी जी के सामने से होकर जाने लगे और प्रत्येक ने उन्हें प्रणाम करके 2 रौप्य मुद्राएं प्रणामी के रूप में दी। कार्यक्रम में कुल 2 घंटे लगे थे। राजा जी ने खेतड़ी से विदाई के समय स्वामी जी को 3,000 रुपए अर्पित किए थे। उन्हें स्वामी सदानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद के हाथों मठ भेज दिया गया।
1: स्वामी जी के लिए खेतड़ी का काम जितना आनंददायक था उतना ही विश्रामदायक भी था। व्याख्यान देने और अपने लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के अतिरिक्त बचे हुए समय के दौरान वे अश्वरोहण, विभिन्न स्थानों का परिदर्शन और अपने संगियों और राज परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप किया करते थे।
2: एक बार जब खेतड़ी नरेश और स्वामी जी अश्वरोहण करते हुए चले जा रहे थे, स्वामी जी ने देखा कि राजा के हाथ से काफी खून बह रहा है। स्वामी जी के मार्ग से एक कंटीले वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से हटाकर पकड़े रहने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ होगा। स्वामी जी के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर राजा ने उसे हंसकर उड़ा दिया। उन्होंने कहा था, क्या सर्वदा धर्म रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है स्वामी जी? युवा राजा वस्तुतः एक सच्चे क्षत्रिय थे।
1: खेतड़ी से स्वामी जी ब्रह्मचारी कृष्णलाल को साथ लेकर कलकत्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इंदौर, खंडवा, रतलाम आदि स्थानों से होकर वे लौटे। कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद भगिनी निवेदिता मुंबासा नामक जहाज से कलकत्ता आई। स्वामी जी ने स्वयं जाकर कलकत्ता बंदरगाह पर उनका स्वागत किया।
2: यहाँ पर निवेदिता के भारत आगमन के विषय में 2-4 बातें कहना आवश्यक होगा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी कि निवेदिता भारत वर्ष में आकर भारतीय नारियों की सेवा में लग जाएं, परंतु वे निवेदिता की स्वाधीन इच्छा में हस्तक्षेप करने को प्रस्तुत न थे। विशेषकर वे जानते थे कि भारतीय जीवन धारा इंग्लैंड की तुलना में इतनी भिन्न है और यहाँ की आर्थिक अवस्था भी इतनी खराब है कि संभव है निवेदिता उसके साथ सामंजस्य बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो। अतः यद्यपि निवेदिता भारत आने का आग्रह व्यक्त कर रही थी, तदापि स्वामी जी ने उन्हें सब बातों का विचार करके निवेदिता के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब वे समझ गए कि निवेदिता का संकल्प अटल और विश्वसनीय है, तब भी उन्होंने अपने एक पत्र 29 जुलाई 1897 में उनके समक्ष भारतीय परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया और कहीं वे बाद में वास्तविकता को जानने के बाद पश्चाताप न करें, इसलिए उन्हें पहले से ही सावधान कर दिया और इसके साथ ही अपना आमंत्रण भेजते हुए लिखा,
0: मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है भारत के कार्य में तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। भारत के लिए, विशेषता भारत के नारी समाज के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी की एक सच्ची सिहिनी की आवश्यकता है। भारत वर्ष अब भी महीयसी नारियों को जन्म नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, निष्ठा, पवित्रता, असीम प्रेम, दृढ़ता और सर्वोपरि तुम्हारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले केल्टिक रक्त के कारण तुम एक ठीक वैसी ही नारी हो जिसकी आज आवश्यकता है। परंतु कठिनाइयां भी अनेक हैं। यहां पर दुख, अंधविश्वास तथा दासत्व का जो साम्राज्य है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। इस देश में आने से तुम्हें अर्धनग्न नर नारियों के ऐसे समूह के बीच निवास करना होगा जिनमें जाति एवं स्पर्श विषयक अद्भुत विचार हैं, जो भय अथवा घृणा के कारण गोरों से दूर ही रहना चाहते हैं और गोरे लोग भी उनसे अत्यंत घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरी नस्ल के लोग भी तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारी हर गतिविधि को शंका की दृष्टि से देखेंगे। यदि तुम इन सब बातों के उपरांत भी कर्म में लगे रहने का साहस करो तो फिर तुम्हारा शत बार स्वागत है। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व तुम्हें भली भांति विचार कर लेना होगा और इस कार्य के दौरान बाद में यदि तुम कभी असफल या संतुष्ट हो भी जाओ तो मेरी ओर से यह निश्चित रूप से जान लो कि भले ही तुम भारत के लिए कार्य करो या ना करो, वेदांत को त्याग दो या उसे धरे रहो, मैं आमरण तुम्हारे साथ हूं। हाथी के दांत और मर्द की बात, एक बार जो निकल आते हैं फिर वापस नहीं जाते।
1: इसके साथ ही एक अन्य विषय में भी उन्होंने निवेदिता को सावधान कर दिया। मिस मूलर का स्वभाव स्वामी जी बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। वे अत्यंत हठी और हर मामले में अपना मत चलाने को व्यग्र थी। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने पर बात बात में कलह के बीच में पड़कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः भुलाकर उसी व्यक्ति का सर्व प्रकार से अनुसरण करना पड़ता है। स्वामी जी जानते थे कि निवेदिता स्वाभाविक रूप से ही इस नवीन क्षेत्र में स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य करना पसंद करेगी और अपने व्यक्तित्व का वे इस प्रकार पूर्ण रूपेण विसर्जन भी नहीं कर सकेगी। अतएव उन्होंने निवेदिता को सावधान करते हुए लिखा,
0: तुम्हें अपने ही पांव पर खड़े रहना होगा और मिस मूलर या किसी अन्य पर निर्भर होने से काम नहीं चलेगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं और इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है, लेकिन हमारा प्रसारण जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता देते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 5:10 से। शाम 6 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम वतन का राग, 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। टेक गुरु कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के क्या फायदे हैं, और ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7 से। सुंदरलाल बहुगुणा पर केंद्रित कार्यक्रम भारत विभूति सुनिएगा 7:30 से।

रात्रि 8:30 पर सुनेगा काव्य गुंजन में रश्मि रथी का भाग एक। कलाकार होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा। डॉक्टर जयंत नार्लिकर पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक सुनेगा रात्रि 9 बजे से। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर। इन कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुनेंगे सांध्यकालीन सभा में रेडियो आजाद हिंद से 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं तराने आजादी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, जिसे पेश करेंगे साईं ऐश्वर्य महाशब्दे, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सुंदरलाल करेले द्वारा बांसुरी वादन की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गायन साईं ऐश्वर्य महाशब्दे का।
2: राग कामोद से प्रारंभ कर रहा हूँ, विलंबित झुमरा ताल में पहली रचना है।

हंस ध्वनि। ये राग सभी गुणजन जानते हैं, कर्नाटक शैली का राग है, लेकिन कर्णप्रिय और मधुर होने के साथ साथ ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही प्रभावी है जितना दक्षिण भारतीय भारत में है।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुगम संगीत।
2: उस आश्रम भजनावली में कुछ श्लोक हैं, उनमें से 4 चुनिंदा श्लोक वो लेकर उपस्थित हो रही हैं, और इन्हीं श्लोकों से शुभारंभ।

हो या केवल मानसिक हो, अमुक करने से हो या अमुक न करने से हो, हे करुणा सागर, कल्याणकारी महादेव, उन सब के लिए तू मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय और जीवन में तेरी ही जय जयकार हो।

हे ईश्वर, तू ही एक शरण लेने योग्य आश्रय का स्थान है। तू ही एक वर्णीय इच्छा करने लायक है। तू ही एक जगत का पालन करने वाला है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। तू ही एक इस सृष्टि को पैदा करने वाला, पालने वाला और इसका संहार करने वाला है। और तू ही एक निश्चल और निर्विकल्प है।

गांधी जी का कहना था कि डर शरीर की बीमारी नहीं, ये आत्मा को मारता है, और प्रार्थना हमें निर्भय बनाती है। दरअसल हमारी आध्यात्मिक यात्रा साहस की यात्रा है। प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिषेक नागराज।

गांधी जी ने कहा था, मुझे यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी दुनिया का लाभ होता है, और ठीक इसी तरह एक मनुष्य के अधः पतन के साथ उसी हद तक सारे संसार की अधोगति भी होती है। इसीलिए पराई पीर को समझने वाले करुणा से और प्रेम से भरे हुए मनुष्य को वैष्णव जन कहा गया। आइए सुनते हैं बापू का प्रिय भजन, प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज, रचना नरसी मेहता की।

जब हम गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका पूरा जीवन अपने अंतःकरण के प्रक्षालन का जीवन रहा। वो लगातार सत्य के साथ प्रयोग करते रहे। उनके विचार, वाणी और कर्म में हमेशा एक रूपता रही। जब शब्द आचरण से मंडित होता है तो वो मंत्र की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मीराबाई की यही भक्ति रचना सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

जिस तरह सुबह और शाम का आना जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना भी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न राग न विराग। सिर्फ उस विराट की एक झलक पा लेने का जो अनुभव है, वो ही ऐसा है जो मिटता नहीं। जीवन की नश्वरता की ये चेतना ही हमें उस परम सत्ता से जोड़ती है। संत कबीर ने भी कहा, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसी तरह नजीर अकबर आबादी कहते हैं, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। आइए सुनते हैं ये रचना, गा रहे हैं अभिषेक नागराज।

जिसे उस परमात्मा की झलक मिल गई, उसके लिए ये सारा संसार मिट्टी हो जाता है। ईश्वर की वीणा जिसके हृदय में बज उठी, उसके लिए सारी आवाजें शोर हो जाती हैं। सूफी परंपरा भी उसी विशुद्ध प्रेम की गुनगुनाहट है। निजामुद्दीन औलिया की रचना आइए सुनते हैं, गा रही हैं तापसी नागराज।

दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय भेंट स्वरूप बहुत से गहने उन्हें दिए गए थे। बा स्त्री सुलभ स्वभाव की वजह से उन गहनों को रखना चाहती थी, लेकिन गांधी जी इससे इनकार कर रहे थे। बा ने अंत में रोते हुए कहा कि अच्छा एक तो रख लूँ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। बा हार कर उन गहनों का उन्होंने त्याग किया। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अंधेरे में हो और उसे खींच कर हम उजाले में ले आए। अपरिग्रह का जो व्रत गांधी जी का था उसका पालन उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था और अंततः बा उससे सहमत हुई। संत कबीर का भक्तिपद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

गांधी जी का मानना था कि अंतःकरण की शुद्धता और सदाचरण से ही हमारे सांसारिक जीवन का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। इसलिए गांधी जी ने एकादश व्रत का सूत्र दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, स्पर्श भावना और साहस। ये व्रत हमारा भीतर और बाहर शुद्ध कर देता है और तब हमारे भीतर प्रार्थना का फूल खिलता है और उसकी सुगंध हमारे भीतर फैल जाती है। संत रैदास की ये भक्ति रचना प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत सोनी।

वो हमारी दृष्टि है जो इस संसार को अलग तरह से छूती है और सृष्टि का कण कण हमें ईश्वर की अनुभूति से भर देता है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी हर रचना हमें छूती है। इसी प्रेम से भरकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस संसार को आनंद यज्ञ कहा। प्रस्तुत है गुरुदेव की रचना

गांधी जी ने कहा था कि यदि हम धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि से मैं और मेरा निकाल सकें तो हम शीघ्र ही स्वतंत्र हो सकेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकेंगे। ऋग्वेद में एक प्रार्थना है कि जैसा संकल्प होगा वैसा ही कर्म होगा, जो तय किया गया है परिणाम वैसा ही होता है। इसलिए हे परमेश्वर, हमारे मन को शुभ संकल्प वाला बनाओ। तो आइए समापन करें स्वस्ति गान से। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मंगल कामना का हिंदी अनुवाद किया है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रस्तुत कर रही हैं तापसी नागराज।

0: इसके साथ ही आज की ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है।
1: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुगम संगीत सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्ठों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थी। उनकी छटा दिखाते हुए व्यंत में सफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गए और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यूं लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नाराश वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाती ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहाँ भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहाँ। आपको विश्वास ना होगा, उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहाँ। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तोड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए, समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा, सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है। सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नियत बिगड़ गई हो। मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े, सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो, गंगा की कसम जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है,
1: अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं, रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवे तो कहां जाऊं। आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे, वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर जो ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता और फलों का तो कहना ही क्या। वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ न पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर, इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? अजी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागी

0: भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं?
1: यहाँ किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपए प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे।
0: डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है?
1: जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूँ, इन्हीं कैसा खाना खाता हूँ और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहाँ 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं, बस मैं इनका मुखिया हूँ। जो कुछ सलाह देता हूँ उसे सब मानते हैं, कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूँ। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहाँ कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है।
0: अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं।
1: जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए मेरी फीस में बाधा न पड़े, और हमारे वकील साहब क्षमा कीजिएगा ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है, पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगनी तिगनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5000, 50 और 50000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी हैं, पर इनमें से एक भी धन उपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सबके सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे, उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगे। लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है, तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ये रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजा कर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेम शंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेम शंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
4: अतुल्य भारत।
3: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
5: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
3: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
5: बिल्कुल,
3: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
5: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
3: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
5: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
3: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
5: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
3: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
5: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
3: कबीरा कोता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
5: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
3: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहना ही नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
5: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
3: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
5: बिल्कुल,
3: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
5: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे, कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं, कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए, कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा। जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं, जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया।
3: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते।
5: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
3: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
5: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
3: श्रोताओ, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
5: बिल्कुल।
3: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
5: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
3: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
5: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
3: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
5: खैर इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
3: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई। ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
3: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
5: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद शास्त्र पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
3: और श्रोताओं सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
5: खैर ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
3: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
5: श्रोताओं गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए।
3: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
6: बिल्कुल,
3: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
5: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
3: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
5: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
3: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
6: बिल्कुल,
3: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
5: कौन सी कविता?
3: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
5: वाह,
3: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
5: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
3: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
5: बिल्कुल,
3: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
5: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
3: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
5: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
3: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
5: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे। सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
3: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
5: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
3: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
5: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
3: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
5: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
3: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
5: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
3: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
5: श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
3: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि आठवीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
3: बिल्कुल ठीक,
5: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
3: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
5: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
3: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
5: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
3: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
5: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
3: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
5: जी।
3: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
5: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
3: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
5: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
3: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
5: बिल्कुल।
3: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
5: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोच तो हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
3: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
3: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
3: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
5: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
3: और कंचन राजानी के।
5: अब हमें आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गायिका अश्विनी भिंडे देशपांडे और श्री संजीव अभयंकर का युगल गायन।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका अश्विनी भिड़े देश पांडे और ऋषि संजीव अभयंकर का युगल गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आज़ाद हिंद के कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हमारी दोपहर कालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है और आरंभ होती है सांध्यकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। शाम के ठीक 5 बजे हैं, आपके साथ मैं हूं आपके लिए इस सांध्यकालीन सभा में आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। हमारे कार्यक्रमों को आप रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्मंडल के प्रथम मंडल से वाचन। आइए आज आपको सुनवाते हैं सूक्त 125।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 125 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं स्वनय दान स्तुति, छंद है त्रिष्टुप और जगति।
1: प्राता रत्नम प्रातरित्वा दधातितम चिकित्वान प्रतिग्रहिया निधत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायस पोषेण सचते सुवीरः। प्रभातकालीन सूर्यदेव स्वास्थ्य प्रद पोषक तत्वों को लाकर मनुष्यों के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृत कृत्य होते हैं। उससे मनुष्य दीर्घायुष्य प्राप्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा स्वास्थ्य जीवन को प्राप्त करते हैं। सुगुर सत्सु हिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै वय इंद्रो दधाति यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षी यजेव पदि मुत्सिनाति। जो दानी मनुष्य प्रातः उठते ही किसी याचक को रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। आय मद्य सुकृतम प्रातरिच्छिन निष्टेह पुत्रम वसुमता रथेन अंशोह सुतम पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरम वर्धय सूनृताभिः। हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आए हैं। आप सुखदायक अभिषुत सोमरस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रय दाता आप हमारा शुभ आशीषों से मंगल करें। उपक्षरन्ति सिंधवो मयो भुव ईजानम च यक्ष्यमाणं च धेनवः प्रणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः। इस समय यज्ञ कार्य करने वालों तथा भविष्य में भी यज्ञीय भाव को पोषित करने वालों के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले याजकों को अन्न की समृद्धि में समर्थ गौएं घृत की धाराएं प्रदान करती हैं। नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रणाति सः देवेषु गच्छति तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिंधवस्तस्मा इयम् दक्षिणा पिन्वते सदा। जो अपने आश्रित मनुष्यों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध करते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उस दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित्त सदैव अन्नादि का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। दक्षिणावता मिदिमान चित्रा दक्षिणावताम दिवि सूर्यासह दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते दक्षिणावंतः प्रतिरंत आयुः। ये विलक्षण उपलब्धियां मात्र सार्थक दान दाताओं को प्राप्य हैं। दिव्यलोक में भी सूर्यदेव उनके लिए ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दान दाता ही अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभ कामनाओं से दान दाता की आयु में वृद्धि होती है। मां प्रणंतो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः अन्यस्तेषां

0: नहीं घेरता। इसके विपरीत जो पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं तथा जो देवताओं को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञादि सत्कर्मों से रहित हैं, उन्हें मानसिक चिंता और शोक संताप घेरे रहते हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 125 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रहो।
1: हम बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम भक्ति संगीत।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। ये जोश ये जुनून हमारे वीर क्रांतिकारियों के सीने में सुलगता रहता था और फूटता तो ज्वालामुखी की तरह, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। बड़ी बात यह नहीं थी कि विरोध की आवाज कितनी बुलंद हुई या क्या परिणाम हुआ, वो ललकार बनी या शोर हुई। क्रांति पथ पर बड़ी बात ये थी कि लगातार आवाज उठाई गई। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, रिश्ते नातों को छोड़ा और देश के लिए खुद को समर्पित किया। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है यशवंत सिंह। यशवंत सिंह का जन्म 27 जुलाई सन 1909 को सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम था नन्हू सिंह। यशवंत की आरंभिक शिक्षा दमोह के म्युनिसिपल हाई स्कूल में हुई थी। वे रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ये वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बलिदान देश की रगों में उबल रहा था। यशवंत सिंह ने भी प्रतिज्ञा ली कि अब उनकी हर सांस सिर्फ देश के लिए है और वो क्रांति गतिविधियों में संलग्न हो गए। घर वालों की जिद पर उनका विवाह हो गया, लेकिन शादी की पहली रात ही उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था, तुम इस घर में रह सकती हो किंतु मेरी सच्ची सहधर्मिणी मेरी कटार है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं और इस धरती के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, जिनसे मुझे निरंतर युद्ध करते रहना है। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मैं जा रहा हूं। ये अपनी पत्नी से उनकी पहली और अंतिम भेंट थी। यशवंत सिंह घर छोड़कर चले गए और पत्नी तक दोबारा लौटे तो तभी जब पत्नी की चिता जल रही थी, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और चिता की भस्म हाथों में ले सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे आकर मिलूंगा। यशवंत सिंह अब रेल विभाग में नौकरी कर रहे थे। भुसावल में वो कैबिन मैन थे। रेलवे की नौकरी के साथ ही वो क्रांति कार्य में पूरी तरह संलग्न थे। अपने दो मित्रों देव नारायण तिवारी और दलपत राव के साथ मिलकर वो क्रांतिकारी साहित्य के वितरण का कार्य करते थे। इस तरह जनता में क्रांति साहित्य पहुंचाकर वो आम जन को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे थे। इन तीनों क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि 23 जुलाई सन 1931 की रात पंजाब मेल से ब्रिटिश फौजी अफसर लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा करेगा, जिसके पास एक अच्छी राइफल होगी। इस राइफल की आवश्यकता क्रांतिकारियों को थी। यशवंत सिंह ने नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ली और खंडवा जा पहुंचे और यहां अपने दोनों साथियों से मिलकर अफसर से राइफल छीनने की योजना बनाई। खतरा कम नहीं था। किसी भी अंग्रेज अफसर पर हाथ रखना अंग्रेजों के सीधे निशाने पर आने जैसा था। लेकिन यशवंत सिंह तो आजादी के दीवाने थे। सैनिकों सा जज्बा दिल में लिए वो बढ़ चले थे क्रांति पथ पर।

यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ 23 जुलाई सन 1931 को खंडवा स्टेशन पहुंचे। तीनों ने प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद लिए थे। पंजाब मेल जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो वो उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा कर रहा था, जो बंबई से पूना जा रहा था। इस डब्बे में लेफ्टिनेंट शीहन भी था, जो 28 फील्ड ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट था। हैक्स के साथ एक कुत्ता भी था। तीनों क्रांतिकारियों ने डब्बे का पूरा जायजा लिया और सतर्क होकर बैठ गए। सुबह 4 बजे का समय था। गाड़ी डोंगरगांव और मांडवा स्टेशन के बीच द्रुत गति से दौड़ रही थी। दोनों अंग्रेज अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। स्थिति अनुकूल पाकर यशवंत सिंह और देव नारायण ने कटार से लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला बोल दिया और दलपत राव शीहन के पास पहुंच गया, ये सोचकर कि यदि वो हैक्स को बचाने की कोशिश करे तो वो उसे रोक लेगा। डब्बे की हलचल सुन हैक्स का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और दोनों ही अंग्रेज अफसरों की नींद खुल गई। लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला होता देख शीहन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दलपत राव ने शीहन पर अपने कटार से वार कर दिया। शीहन ने कटार को मजबूती से पकड़ लिया और फिर दोनों भिड़ गए। इस जोर आजमाइश में कटार टूट गई और मूठ वाला हिस्सा दलपत राव के हाथ में रह गया और कटार की धार शीहन के हाथ में आ गई। शीहन ने कोई गलती नहीं की और कटार के टूटे हुए फल से दलपत राव पर उसने वार कर दिया। इसके साथ ही बड़ी फुर्ती से लाइट जलाकर गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींच दी। धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से रुकती उसके पहले ही तीनों क्रांतिकारी गाड़ी से कूद गए और पास के जंगलों की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन के डब्बे में लेफ्टिनेंट हैक्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी राइफल क्रांतिकारियों के पास पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते लेफ्टिनेंट हैक्स को पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वो बुरी तरह से घायल था। पूरी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसने दम तोड़ दिया। अंग्रेजों के भीतर खलबली सी मच गई। लेफ्टिनेंट शीहन से क्रांतिकारियों का हुलिया पूछा गया। तमाम जानकारी लेकर अपराधियों की खोज आरंभ हुई। तीनों क्रांतिकारी अपनी हिम्मत और वीरता के बल पर अपने मकसद में कामयाब हो आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनके सर पर तो स्वाधीनता का जुनून सवार था।

एक पुलिस दरोगा जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, क्रांतिकारियों की खोज में वो रेलवे लाइन की ओर बढ़ने लगा। उसे अंदाजा था कि हो न हो सुबह होते होते कुछ लोगों ने उन क्रांतिकारियों को भागते हुए जरूर देखा होगा। रेलवे लाइन पर कुछ लोग काम करते हुए उसे मिले। उनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति नेकर, काला कोट और जूते पहने हुए मांडवा स्टेशन की तरफ गया है। बातचीत चल ही रही थी कि रेलवे ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस दरोगा ने वो ट्रॉली रुकवाई। ट्रॉली में बंबई का डिप्टी चीफ इंजीनियर, भुसावल डिवीजन का इंजीनियर और एक सहायक बैठे हुए थे। दरोगा ने सारी घटना उन्हें बताई और वो चारों क्रांतिकारियों की तलाश में मांडवा की ओर चले गए। कुछ दूर पहुंचने पर पटरी पर चलता हुआ एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। हुलिया बिल्कुल वही था जो रेलवे लाइन में काम करने वालों ने बताया था। ट्रॉली की आवाज उस व्यक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही ट्रॉली रुकने को हुई, वो व्यक्ति फुर्ती में आया। वो तुरंत पटरी छोड़ जंगल की तरफ भागा। ट्रॉली पर सवार लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते हुए पास ही एक पुलिस स्टेशन मिला। दरोगा ने वहां पहुंचकर अपनी सहायता के लिए कुमुक मांगी। 50 जवानों ने जंगल के उस क्षेत्र में क्रांतिकारियों की खोज शुरू की। 5-5 जवानों के जत्थे बने और पूरे जंगल में वो फैल गए। लेकिन वो क्रांतिकारी चतुराई से फिर रेलवे लाइन पार कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगा। वो एक खेत पार कर रहा था कि तभी वहां काम करने वाले मजदूरों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये देवनारायण तिवारी थे। अगले दिन एक विश्वासघाती ने यशवंत सिंह का पता दिया और वो भी गिरफ्तार हो गए। और इसके कुछ दिनों बाद दलपत राव भी पकड़े गए। तीनों क्रांतिकारियों पर 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में मुकदमा चला। 21 सितंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई तथा दलपत राय को आजन्म निर्वासन का दंड दिया गया। फांसी के पूर्व यशवंत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आप मेरी मृत्यु से दुखी ना हों। आप यही समझें कि आप 6 नहीं 5 पुत्रों के ही पिता थे। मैं एक वीर की मौत मरूंगा, आपको भी मुझ पर गर्व होना चाहिए। और इस तरह 21 सितंबर सन 1931 को जबलपुर के केंद्रीय कारागार में यशवंत सिंह को देवनारायण तिवारी के साथ फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अमर हो गए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 10वीं कड़ी लेकर हाजिर हैं। इतिहास के पन्नों से हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, यानी 9वीं कड़ी में सुना था कि गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पहले दिन गढ़ा के राजा वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और 3 बार मुगल सेना को नरई घाटी से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार पहले दिन गढ़ा राज्य की विजय हुई, किंतु युद्ध में वीर नारायण के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। वो अत्यंत पराक्रम से लड़ रही थी। उस दिन दोपहर के बाद आसफ खां की सेना के तोपखाने ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर के सैनिक हताहत हो रहे थे। शाम होने को थी। इसी बीच रानी दुर्गावती की दाई कनपटी पर एक तीर आकर लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक तीर और उनकी गर्दन में जा लगा और दूसरा तीर उनके सीने पर। रानी दुर्गावती अच्छी तरह जानती थी कि शत्रु मुगल सेना के हाथों जीवित लगना कितना अपमानजनक होगा। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने महावत आधार सिंह बखीला को कहा कि वो अपनी कटार से रानी की जीवन लीला समाप्त कर दे, जिससे वो शत्रुओं के हाथ ना लगे। लेकिन महावत आधार सिंह बखीला तो उन्हें अपनी मां मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे निवेदन किया कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो केवल उन्हें आज्ञा प्रदान करें। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र से कैसे पलायन कर सकती थी, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुई। अगले ही पल उन्होंने स्वयं ही अपने आप को कटार मार ली और गढ़ा की अस्मिता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। रानी दुर्गावती वीरांगना हुई। एक बार फिर इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, आगे जानना चाहेंगे आपसे कि रानी के प्राणोत्सर्ग के उपरांत क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य की अस्मिता के लिए वीरांगना हुई थी। वह प्राणोत्सर्ग करने के बाद भी विजयी हुई। उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, जिजीविषा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। जैसा कि आख्यान में भी कहा गया है कि ताक निशाना महारानी के हो नहीं कोई उपचार, जख्मी चोट लगिन सतन मां बहे रक्तन की धार। माता का रक्त जो है वो बह रहा है, उनके सीने पर वाण लगा है, चोट लगी है। जोर फिरंगी माथा मां मोहे नहीं जावे आँच, नारी के तन आए बचा हूं यही है हवे मोला सांच। नारी का तन अब बचाना होगा, उसके अपमान से बचाना होगा। कहत कहत माता गिरिए पावे गति निर्वाण, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। फिर आगे कहते हैं कि माता अब गिर रही हैं और निर्वाण को प्राप्त कर रही हैं। सोचिए, एक वीरांगना है, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है। ऐसे भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार, और उन्होंने तो अब अमृत का चोला पहन लिया है
0: जी।
1: और वो अब परलोक को सिधार रही है। चलो चढ़ी गढ़ा मां मितवा करवो तन निसार, हाथ जोर विनती करे हो जय जय होए तुम्हार। तो माँ की जय है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवार माता दुर्गा कहाए, जय जय होवे तुम्हार, जय जय होवे तुम्हार। वाह पूजा जी, रानी के प्राणोत्सर्ग करने पर जिस प्रकार हमें आख्यान में ये वर्णन मिलता है, उसी तरह क्या अन्य ग्रंथों में भी कुछ उल्लेख है।
1: जी हाँ, गणा राज्य के ख्याति लब्ध कवि थे कवि केशव दीक्षित और नरहरि महापात्र, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी।
0: जी।
1: इनके द्वारा गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था
0: जी।
1: जिसमें इन्होंने लिखा कि रानी दुर्गावती वीर शिरोमणि राजा दलपति शाह की लक्ष्मी के समान है, जिसकी स्तुति चारों दिशाओं में श्रेष्ठ राजाओं और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। सत्य के प्रति आसक्त मन वाली चंद्रमा की तरह पवित्र कीर्ति युक्त कर्ण के समान दानी दुर्गा के अवतार वाली यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण कर लेती है
0: जी।
1: इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कहा है और आगे लिखते हैं कि जिसके नाम की कीर्ति रूपी लता स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में अबाध गति से गंगा की तरह बढ़ने लगी, दुर्गा की अवतार यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण करने वाली थी।
0: वाह क्या बात है पूजा जी। जैसे आपने बताया था कि मुगल सेना की तरफ से भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें रानी के बारे में उल्लेख था, क्या प्राणोत्सर्ग के बाद का भी कुछ उल्लेख है उनमें?
1: बिल्कुल, मुगल साहित्य में भी रानी दुर्गावती के पराक्रम की चर्चा होती रही, इसलिए अकबरनामा में उस पल को चित्रित किया गया जब रानी को अनेक तीर लग चुके थे।
0: अच्छा।
1: वह प्राणोत्सर्ग करने ही वाली थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उनके हाथी सरमन को भी अनेक तीर लगे हुए हैं, फिर भी वह रण में चिंघाड़ रहा है। महावत आधार सिंह बखीला ने भी रानी को बचाने के लिए तलवार उठा रखी है और वह भी वीरता पूर्वक लड़ रहा है। उनके सेनानायक उन्हें चारों ओर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुगल सेना का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अनेक सैनिक नदी के किनारे लहूलुहान पड़े हैं। अबुल फजल ने इस भीषण युद्ध का शब्दों में भी जिक्र किया, जिसमें अनेक सैनिकों के हताहत होने और गढ़ा राज्य के प्रमुख सेनापतियों जैसे कनूर कल्याण बखीला चकरमान खरचली खान जहान डकीत और महारक ब्राह्मण के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी।
0: अच्छा।
1: मुगल इतिहासकार बदायूं ने भी रानी के प्राणोत्सर्ग पर लिखा है, लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो बहुत बुरा है। बदायूं ने लिखता है कि प्रत्येक घृणित पशु अपना घृणित भोजन प्राप्त कर ही लेता है, यानी उसका कहने का अर्थ है कि दुर्गावती को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी वैसी ही मिली, जो उसकी नियति होनी चाहिए थी वैसी ही हुई
0: जी।
1: और यहाँ तक ही वो रुकता नहीं है और आगे लिखता है कि यह सच है कि किसी ईसाई का कुआं शुद्ध नहीं होता, किंतु वह कम से कम एक यहूदी की लाश धोने के काम तो आ ही जाता है। युद्ध में शत्रुओं के लिए इस तरीके से टीका टिप्पणी करने की परंपरा भारत में कभी नहीं रही थी।
0: बिल्कुल।
1: किंतु बदायूं ने अपनी सीमाएं भूल जाता है और एक रानी जो पराक्रम के साथ पराकाष्ठा तक लड़ी उसके प्रति इस प्रकार से लिखना उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है।
0: निश्चित रूप से पूजा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। आपने जब बात की अकबरनामा की, उसमें कितनी ही बार ये जिक्र आया कि वो कितनी बड़ी योद्धा थी, उनके रूप सौंदर्य के साथ उनके गुणों की भी चर्चा की गई, और फिर मृत्यु के पश्चात तो हमारे यहाँ दुश्मन की भी कोई बुराई नहीं की जाती रही है। लेकिन मुगल सेना के साहित्य में यदि इस तरह का कुछ मिला है तो निश्चित रूप से इस तरह की लिखावट ही हम कह सकते हैं कि वो घृणित है। पूजा जी, रानी तो यहाँ वीरांगना हो गई, ये जिक्र आ गया, कहानी हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन जब रानी वीरांगना हुई उसकी एक दिन पहले उनके पुत्र जो कि राजा वीर नारायण थे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें सेना किसी तरह बचा करके ले गई थी, तो उस सेना की टुकड़ी का क्या हुआ, राजा वीर नारायण का क्या हुआ और क्या मुगल सेना ने उन पर हमला नहीं किया?
1: जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में घायल राजा वीर नारायण को गढ़ा की सेना की एक टुकड़ी बचाकर चौरागढ़ के किले में ले गई थी
0: जी।
1: और यहाँ बुरी तरह से घायल वीर नारायण का उपचार होने लगा, लेकिन आसफ खां को ये खबर लग चुकी थी कि वीर नारायण चौरागढ़ के किले में है। उसने चौरागढ़ की ओर अपनी सेना सहित कूच कर दिया।
0: अच्छा।
1: आसफ खां की सेना का सामना गढ़ा राज्य के मंत्री आधार सिंह कायस्थ ने किया, किंतु आसफ खां की सेना के सामने निश्चित ही था कि चौरागढ़ का बचना मुश्किल था
0: जी।
1: इसलिए जब सेना चौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई तो घायल वीर नारायण भी पूरी वीरता से उनका सामना करते हुए लड़े, किंतु इस युद्ध में वीर नारायण युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: निश्चित रूप से गढ़ा की सेना यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन बहुत दुखद के माँ और बेटे दोनों की मृत्यु एक दो दिन के अंदर अंदर वहां पर हो गई। तो क्या फिर मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया?
1: अब यह निश्चित था कि मुगल सेना किले में प्रवेश करेगी ही।
0: जी जी।
1: वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो ही चुके थे।
0: जी।
1: आधार कायस्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया। लूटपाट, आगजनी, फसलों को नुकसान पहुंचाना, पशुओं को खदेड़ना, ये सब तो होना ही था।
0: जी।
1: और हुआ भी, लेकिन इसके अलावा स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा, जैसा कि उस समय होता भी था, तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए युद्ध के परिणाम के अनुमान के अनुसार किले में जौहर की तैयारियां की जा चुकी थी। जैसे ही मुगल सेनापति आसफ खां की सेना चौरागढ़ के किले के अंदर घुसी, दूसरी ओर किले की स्त्रियों ने भीषण अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया। यह कितना भयावह दृश्य रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अबुल फजल ने इस जौहर का उल्लेख इस प्रकार किया है कि वृत्ताकार यानी कि एक गोलाकार कुंड में भीषण आग लगी थी। सभी स्त्रियां एक एक करके उसमें प्रवेश कर गईं। वह कहता है जैसे गुलाब की फसल आग लग जाने पर राख में तब्दील हो जाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अग्नि कुंड में प्रवेश करते ही राख में तब्दील हो गईं। सभी स्त्रियां उसमें जलकर राख हो गईं। वह आगे लिखता है कि जब उस जगह का द्वार खोला गया जहां अग्नि कुंड था, तो केवल दो ही स्त्रियां जीवित अवस्था में मिली थीं।
0: अच्छा।
1: ये दोनों स्त्रियां इसलिए बच गई थीं क्योंकि लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी कि बीम
0: जी
1: उनके पास आकर इस प्रकार गिरा कि वह आग में झुलस नहीं पाई और बेहोश हो गई।
0: वाकई श्रोताओं, कितना विभत्स, कितना ये कठिन दृश्य रहा होगा जिस किसी ने भी वो देखा होगा, भले ही वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो। और यदि आप उस जौहर की कल्पना भी करें तो रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़ा की जो महिलाएं थीं वो वाकई में सब की सब अपनी रानी की तरह ही उस जौहर में कूद कर वीरांगना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपने दिया। पूजा जी, ये दो स्त्रियां कौन थी जो उस कुंड में जौहर करने के बाद भी किसी तरह से बच गई थी, और क्या उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ?
1: ये दोनों स्त्रियां कौन थीं इसका भी उल्लेख अबुल फजल ने ही किया है। पहली थी वीरांगना रानी दुर्गावती की बहन कमलावती।
0: अच्छा।
1: और दूसरी थी पूरागढ़ के राजा की कन्या यानी पूरागढ़ की राजकुमारी। इनका नाम तो नहीं मिलता है
0: जी,
1: पर उल्लेख है। इस राजकुमारी से ही राजा वीर नारायण का विवाह तय हुआ था।
0: ओहो।
1: और कुछ ही दिनों में इनका विवाह होने भी वाला था, किंतु राजा वीर नारायण के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने का समाचार सुनते ही पूरागढ़ की राजकुमारी ने सहर्ष जौहर करना स्वीकार किया।
0: जबकि वो विवाहित भी नहीं थी।
1: जी हाँ, तब वह विवाहित भी नहीं थी, 16-17 साल की रही होंगी। वह अन्य स्त्रियों के साथ जौहर के लिए अग्निकुंड में सहर्ष ही प्रवेश कर गई थी। संभवतः रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और इस राजकुमारी ने सर्वप्रथम अग्निकुंड में प्रवेश किया होगा, क्योंकि शायद आग पूरी तरह फैल नहीं पाई होगी और आग लगते ही ऊपर की ओर लगा लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी बीम का कोना जल गया होगा और वो नीचे गिरा। उसके गिरते ही ये दोनों उसके पीछे दब कर बेहोश हो गईं और बच गईं। लेकिन इनका बचना शायद जौहर से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। इनकी जो परिणति हुई उसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती के साथ ही राजकुमारी को भी अकबर के मुगल हरम की घृणित यातनाओं को झेलना पड़ा।
0: हो, ये कितना दुखद है श्रोताओं। देखिए कि एक 16-17 साल की जो बालिका जिसका विवाह राजा से तय हुआ है, और जब उस बच्ची ने, उस बालिका ने, उस तरुणी ने जब ये सुना कि उसके होने वाले पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सहर्ष जौहर के लिए तैयार हो गई और उस किले में आ गई जहाँ पे जौहर होना तय हुआ था। मनचाही मौत तो उसे नसीब नहीं हुई, वो किसी तरह बच गई, लेकिन फिर भी उसके शौर्य की गाथा सुनकर हम आज उसे वीरांगना निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अकबर का चरित्र देखिए कि अकबर का जो हरम था जहाँ इन बची हुई दो मासूमों को वहाँ पर ले जाया गया, जो किसी तरह मौत के मुँह से बच गई थी, फिर भी अकबर के हरम में उन्हें शामिल किया गया। ये कितना घृणित था, और इससे समझ में आता है पूरी मुगल सेना का चरित्र किस तरह का था। पूजा जी, जैसा कि महिलाओं ने जिस स्थिति से बचने के लिए जौहर किया था उससे ये तो नहीं बच पाई, लेकिन जिसके लिए हमेशा से अकबर की सेना, मुगल सेना और पहले के भी मुगल बदनाम थे कि जब वो युद्ध क्षेत्र के लिए जाते थे, जब वो कहीं किसी तरह से विजय प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद वो जो जो चीजें करते थे वहां पर, क्या यहाँ पे भी उन्होंने वही किया, लूटपाट मचाई, क्या फसलों को नुकसान पहुंचाया?
1: बिल्कुल, रानी दुर्गावती के प्राणोत्सर्ग के बाद आसफ खां की सेना गढ़ा राज्य में घुस गई
0: जी।
1: और जैसा कि अक्सर मुगल सेना किया करती थी, उन्होंने यहाँ अंधाधुंध पशुओं को खदेड़ा, फसलों को नुकसान पहुंचाया और उससे भी अधिक शहरों में लूटपाट की, गांवों में घुस गए, वहां लूटपाट की। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को, मठों को क्षतिग्रस्त किया। और लंबे इतिहास में अगर हम देखें तो जो हम एक देख रहे थे कि गढ़ा राज्य में वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी, लगातार आचार्य आ रहे थे और वैष्णव धर्म के अनेक मठ मंदिर यहाँ बन रहे थे, उनमें विद्या अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा था, उस सब पर एक लगाम से लग गई और बहुत लंबे समय तक, हम देखते हैं लगभग 100 वर्षों तक, फिर दोबारा इस तरीके के अध्यापन केंद्र हमको गढ़ा राज्य में न के बराबर दिखाई देते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था वो भी रुक गया और बहुत तरीके से क्षति पहुंचाई गई।
0: अच्छा पूजा जी, एक और चीज का वर्णन यहाँ पर सुनने को आता है कि आसफ खां, जिसे कि अकबर ने खुद वहां पर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, उसने खुद अकबर से ही यहाँ पर गद्दारी की थी, क्या ये बात सही है?
1: बिल्कुल सही है। चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला, कोई सीमा नहीं थी जिसकी। अबुल फजल खुद लिखता है कि उसे वहां सिक्के, ठोस रूप में सोना, नक्काशीदार पात्र, हीरे, जवाहर, मोती, सोने से बनी पशुओं की अनेक ठोस आकृतियां और अन्य दुर्लभ कीमती वस्तुएं मिली थीं। उसे 100 से अधिक बड़े बड़े घड़े मिले थे जो सोने के अशर्फियों से भरे हुए थे। लेकिन वह आगे भी लिखता है कि आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के साथ ही धोखाधड़ी की, यह तो उसका पुराना चरित्र ही था
0: जी।
1: और चौरागढ़ के लूट के माल का सही ब्यौरा अकबर को आसफ खान ने दिया ही नहीं, बल्कि जो धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बड़ी संख्या में हाथी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिली थीं, उसकी सही जानकारी उसने अकबर को दी ही नहीं
0: जी।
1: उसका 10% भी उसने नहीं बताया, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है
0: जी।
1: जिसका खुलासा बाद में हुआ था और पता चला कि 10% ही केवल बताया गया था। अकबर नामा की एक अन्य पेंटिंग है जिसमें आसफ खां को चौरागढ़ की लूट का माल अकबर के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है।
0: अच्छा,
1: इसमें सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई थाल दिखाए गए हैं और कुछ में तो हीरे जवाहरत भरे हुए हैं
0: जी।
1: कुछ हाथी खड़े हैं और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी वो पेश कर रहा है जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
0: जी।
1: यानी जो पेंटिंग में दर्शाया गया है वह तो चौरागढ़ से प्राप्त संपदा का बहुत ही कम भाग है
0: जी।
1: किंतु मुगल दरबार इतनी संपदा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया था। आसफ खां लूट के माल का कुछ अंश अकबर को देकर और रानी को प्राणोत्सर्ग पर विवश करने जैसे कुकृत्य पर वाहवाही बटोर कर गढ़ा राज्य वापस लौट आया।
0: अच्छा,
1: इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच युद्ध के उपरांत की संधि हुई।
0: अच्छा,
1: गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे
0: जी।
1: यानी कि राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर हुए
0: जी।
1: तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गढ़ा के विशाल राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया
0: जी।
1: हमने गढ़ा राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के विषय में जब चर्चा की थी
0: जी।
1: तो बताया था कि उनके अधिकार में 52 किले थे। इन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ गढ़ा राज्य को अकबर को देने पड़े।
0: पूजा जी, जो संधि के मुताबिक गढ़ा राज्य और मुगल शासक के अकबर के बीच जो संधि हुई, तो उसमें जो 10 किले थे, जो 10 गढ़ थे, वो मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य ने दे दिए। तो क्या फिर अकबर ने उन पर शासन किया उसके आगे?
1: जी हाँ, अब ये 10 गढ़ों पर मुगल शासक का अधिकार था
0: जी।
1: और आसफ खां गढ़ा लौट चुका था
0: जी।
1: अब वो यहाँ का सूबेदार बन गया था, उसके पास अकूत संपदा थी जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी, जिसका पता अकबर को भी नहीं था। तो अब वो यहाँ आकर अपनी मनमानी करने लगा, और जब अकबर को खबर पहुंची तब फिर अकबर ने उसकी खबर ली। अच्छा। ये आगे का इतिहास है।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब 10 गढ़ मुगल साम्राज्य के पास आ गए तो अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इन गढ़ों पर दिल्ली से शासन करना अत्यधिक कठिन है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में है, इन पर कब्जा जमाए रखना आसान नहीं था। इसलिए अकबर को यह गढ़ गोंडों को वापस करने पड़े।
0: वाह।
1: किंतु अकबर ने यह गढ़ गढ़ामंडला के गोंड राजवंश के उत्तराधिकारी चंद्र शाह को वापस नहीं किए।
0: अच्छा।
1: बल्कि उन गढ़ों में जो स्थानीय किलेदार आदि थे उनको ये गढ़ वापस किए गए, जिससे नए गोंड राजवंशों का उदय हुआ।
0: अच्छा।
1: ये जो 10 गढ़ दिए गए थे, ये थे रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई।
0: अच्छा।
1: ये सभी किले मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल
0: जी।
1: और उसके आसपास स्थित हैं।
0: जी।
1: भोपाल और रायसेन तो आसपास हैं ही, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
1: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। ये दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
2: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर।
3: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
2: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
3: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान लीजिए किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
2: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
3: जी, उनका जो
2: हर क्षेत्र में,
3: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग। IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है। या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ, तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है, तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
1: सर एक बात तो, और ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं,
2: जी
1: लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते,
2: जी
1: मालूम मालूम नहीं होता। सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
0: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं,
1: जी
0: जो आप हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जा के कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: जी
0: तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
1: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया
0: जी
1: जाता है,
0: जी जी
1: तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? और
0: देखिए
1: क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
0: देखिए ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं, इनका पर्पस यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात ये कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है
1: जी
0: तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आ के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना बच्चों लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स, ओकेजन्स मदद करते हैं।
1: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती है?
0: सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें
1: जी
0: या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाए कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती, जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो
1: जी
0: सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प हेल्प करे।
1: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की, कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि

0: टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं।
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी,
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता, तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर, आखिर में कोई आप संदेश देने चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी, थैंक यू।
2: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम भारत विभूति में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय पर्यावरण आंदोलन का पर्याय बन गया। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वह केवल एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और अटूट संकल्प की अद्भुत गाथा है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी वर्ष 1927 को उत्तराखंड के तत्कालीन टिहरी गढ़वाल रियासत के मरोड़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नारायण दत्त बहुगुणा और माता का नाम जया देवी था। बहुगुणा जी का बचपन गढ़वाल की पहाड़ियों की गोद में बीता, जहाँ प्रकृति से उनका गहरा नाता बना।
2: उनके परिवार में पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता, वनों की महत्ता और प्रकृति के साथ मानव जीवन के अटूट संबंध को देखा और समझा। यह प्रारंभिक अनुभव उनके भावी जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।
1: बहुगुणा जी की प्रारंभिक शिक्षा मरोड़ा गाँव में ही हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा के दौरान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों ने युवा सुंदरलाल के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। गांधीवादी दर्शन, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय के सिद्धांत उनके जीवन के मार्गदर्शक बन गए। बहुगुणा जी ने श्रीदेव सुमन और ठाकुर सेन नेगी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी प्रेरणा ली। इन महान व्यक्तित्वों ने उनमें सामाजिक कार्य और देश सेवा की भावना जागृत की। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के व्यावहारिक पहलुओं और सामाजिक संघर्षों को भी समझने लगे थे।
2: मात्र 13 वर्ष की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। 1940 के दशक में जब देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तब युवा बहुगुणा ने टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने राजशाही के खिलाफ जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यह कारावास उनके संकल्प को और मजबूत करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जन सेवा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को आत्मसात किया।
1: सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका विवाह विमला बेंजवाल से हुआ। विमला जी स्वयं एक प्रगतिशील विचारों वाली महिला थीं और उनमें भी सामाजिक कार्यों के प्रति गहरी रुचि थी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो समान विचारधाराओं का मिलन था। विमला बहुगुणा ने अपने पति के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में व्यस्त थे, तब विमला जी ने महिलाओं को संगठित करने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि एक सफल आंदोलन के पीछे पति पत्नी की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।
2: और दोनों ने मिलकर सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। विमला जी की मृत्यु 2011 में हुई, जो बहुगुणा जी के लिए एक बड़ी क्षति थी। स्वतंत्रता के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने सामाजिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी समाज में अनेक कुरीतियां और असमानताएं मौजूद हैं। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम करना शुरू किया।
1: बहुगुणा जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए। उन्होंने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने समझा कि गरीबी और अशिक्षा समाज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और इन्हें दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर विनोबा भावे के साथ मिलकर काम किया। भूदान और ग्रामदान आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने यह समझा कि पहाड़ों की समस्याएं केवल सामाजिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय भी हैं।
2: 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1973 में मंडल गांव में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाया। बहुगुणा जी ने इस स्थानीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने चिपको आंदोलन को एक दर्शन, एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनका नारा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, बेहद लोकप्रिय हुआ और ये पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र बन गया।
1: बहुगुणा जी ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में पैदल यात्राएं की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं देते बल्कि वे मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और पूरी पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हैं। चिपको आंदोलन की सफलता से वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिमालयी क्षेत्र में 15 साल के लिए हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था।
2: चिपको आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ एक लंबा और कठिन संघर्ष शुरू किया। उन्होंने इस परियोजना को पारिस्थितिकीय रूप से विनाशकारी और भूकंप की दृष्टि से खतरनाक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बांध भागीरथी नदी को नष्ट कर देगा और हजारों लोगों को भी विस्थापित करेगा। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरोध में कई उपवास और सत्याग्रह किए। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया। 1995 में उन्होंने 45 दिनों का उपवास किया, जो उनके जीवन के सबसे लंबे उपवासों में से एक था।
1: हालांकि टिहरी बांध का निर्माण रोका नहीं जा सका और 2006 में यह पूरा हो गया, लेकिन बहुगुणा जी के संघर्ष ने बड़े बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। उनके प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए। सुंदरलाल बहुगुणा केवल एक आंदोलनकारी नहीं थे बल्कि एक गहरे चिंतक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उनका मानना था कि प्रकृति केवल संसाधनों का भंडार नहीं है बल्कि ये हमारी माता है और उसके साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए।
2: उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा विकास के वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करता है। उन्होंने तर्क दिया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाए, न कि उसे नष्ट करे। उन्होंने औद्योगिक विकास के मॉडल पर सवाल उठाए जो केवल लाभ पर केंद्रित हैं और पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करता है। बहुगुणा जी ने गांधीवादी अर्थशास्त्र और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमालय केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए जीवनदायी है और इसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: बहुगुणा जी ने हिमालय की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। ट्रांस हिमालय पदयात्रा में उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा की और हिमालयी राज्यों में पर्यावरण जागरूकता फैलाई। उन्होंने हिमालय में हो रहे अनियंत्रित निर्माण, सड़क निर्माण की गलत तकनीकों, पर्यावरण के दुष्प्रभाव और खनन गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिमालय की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम पूरे देश को भुगतने होंगे।
2: 2013 में केदारनाथ की त्रासदी के बाद उनकी चेतावनियां सच साबित हुई। उन्होंने बार बार कहा था कि हिमालय में अनियोजित विकास और पर्यावरण की अनदेखी प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देती है। सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली। उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1981 में उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें जीवन रक्षा पदक राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
1: 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। उनके पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को विश्व भर में सराहा गया। विभिन्न देशों के पर्यावरणविदों ने उनसे प्रेरणा ली और उनके आंदोलन के तरीकों को अपनाया। हालांकि उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक टिहरी बांध बनाया जा रहा है, वे कोई सरकारी सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। यह उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
2: बहुगुणा जी का जीवन गांधीवादी सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने और उनकी पत्नी विमला ने अत्यंत सादा जीवन जिया। उन्होंने टिहरी के पास एक छोटे से घर में रहना पसंद किया और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। वे खादी के वस्त्र पहनते थे और स्थानीय सादा भोजन करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति और समाज सेवा में है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जीवन में मूल्यों और सिद्धांतों का महत्व सबसे अधिक है।
1: उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बनाया। लोग उनका सम्मान इसीलिए नहीं करते थे कि वे कोई बड़े पद पर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने में सुंदरलाल बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने समझा कि पहाड़ी समाज में महिलाएं प्रकृति से सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे जल, ईंधन और चारे के लिए रोज जंगलों में जाती हैं। बहुगुणा जी ने महिलाओं को संगठित करने में मदद की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी, बचनी देवी और अन्य अनेक महिलाओं ने जो साहस दिखाया, उसके पीछे बहुगुणा जी और उनकी पत्नी विमला जी का प्रोत्साहन था।
2: उन्होंने महिलाओं को केवल आंदोलन में भागीदार नहीं बनाया, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में भी लाया। इससे न केवल पर्यावरण आंदोलन को बल मिला, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी एक नई दिशा मिली। बहुगुणा जी का मानना था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान दिए और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पारंपरिक गीतों और लोक कला का उपयोग करके पर्यावरण संदेश फैलाया। उनके नारे और गीत इतने लोकप्रिय हुए कि पूरे हिमालय क्षेत्र में बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए। पेड़ बचाओ आंदोलन, हिमालय बचाओ, देश बचाओ जैसे नारे जन जन तक पहुंचे।
1: उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि यदि बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाए तो भविष्य में पर्यावरण संरक्षण स्वाभाविक रूप से होगा। सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन ने विश्व भर के पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और जमीनी स्तर पर जन भागीदारी का उनका मॉडल अनेक देशों में अपनाया गया। केन्या में बांगारी मथाई के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और अन्य कई आंदोलनों पर चिपको का प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखता है।
2: विश्व के अनेक पर्यावरणविद और शोधकर्ता बहुगुणा जी से मिलने और उनके अनुभव सीखने आते थे। उनके आंदोलन की रणनीति और दर्शन पर अनेक शोध पत्र और पुस्तकें लिखी गईं। पर्यावरण अध्ययन में चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गया। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंचों पर भारतीय पर्यावरणीय दर्शन और पारंपरिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक पर्यावरण संकट के समाधान भारतीय परंपरा और दर्शन में मौजूद हैं।
1: अपने जीवन के अंतिम दशकों में बहुगुणा जी ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि विकसित देश अपनी जीवन शैली नहीं बदलते और कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विकासशील देशों से भी अपील की कि वे पश्चिम की गलतियों को न दोहराएं और टिकाऊ विकास का रास्ता अपनाएं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि समय अभी भी है, लेकिन तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
2: वर्ष 2021 में जब COVID-19 की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया, तब 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे प्रभावित हुए। मई 2021 में उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए चिंता थी, लेकिन शुरुआत में उनकी हालत स्थिर बताई गई। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्याप्त थी। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता सभी उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी बीमारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अनेक नेताओं और हस्तियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड सरकार ने उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई।
1: 21 मई 2021 को शुक्रवार की सुबह एम्स ऋषिकेश में सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी अंतिम सांस ली। 94 वर्ष की उम्र में इस महान पर्यावरणविद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोविड-19 संक्रमण से उनके शरीर ने हार मान ली, लेकिन उनके विचार और संदेश अमर हो गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन दुखद है। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित थे और चिपको आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
2: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पूरे देश के पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार टिहरी में पारंपरिक रीति से किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने भारत में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी और ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी जारी है। उनके चिपको आंदोलन ने यह साबित किया कि सामान्य लोग, विशेषकर महिलाएं, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं और शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं।
1: उनका सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया। उनसे पहले पर्यावरण मुद्दे केवल वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं तक ही सीमित थे। बहुगुणा जी ने इसे जनता का मुद्दा बनाया और दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की गहरी परंपरा है और इस ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में लागू किया जा सकता है।
2: बहुगुणा जी की वैचारिक विरासत बहुआयामी है। उन्होंने विकास के वैकल्पिक मॉडल की बात की जो पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है जब दुनिया टिकाऊ विकास के मॉडल की तलाश में है। उन्होंने सिखाया कि विकास केवल जीडीपी वृद्धि में नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता में मापा जाना चाहिए। उनके विचार आज जलवायु परिवर्तन के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
1: उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की गांधीवादी परंपरा को पर्यावरण आंदोलन में लागू करके दिखाया कि सामाजिक परिवर्तन हिंसा के बिना संभव है। उनका तरीका दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके जीवन काल में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें वर्ष 1981 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया जिसे वैकल्पिक रूप से नोबेल पुरस्कार माना गया, वर्ष 1987 में शेरे कश्मीर पुरस्कार, वर्ष 1989 में जीवन रक्षा पदक प्रदान किए गए, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाना था जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। अनेक संस्थानों ने उनके नाम पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की।
2: हालांकि बहुगुणा जी को सम्मान और पुरस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कई सम्मान केवल इसीलिए अस्वीकार कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक उनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे तब तक सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। बहुगुणा जी के काम ने भारत में अनेक अन्य पर्यावरण आंदोलनों को भी प्रेरित किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन जो कर्नाटक में प्रभावी था, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन और हाल के वर्षों में आरे फॉरेस्ट बचाओ आंदोलन, इन सभी में चिपको आंदोलन की प्रेरणा देखी जा सकती है।
1: मेधा पाटकर, वंदना शिवा, सुब्रमण्यम स्वामी और अनेक अन्य पर्यावरणविदों ने बहुगुणा जी से प्रेरणा ली। उनके द्वारा स्थापित जमीनी स्तर के आंदोलन का मॉडल आज भी प्रासंगिक है। आज जब भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, वन अधिकार और पर्यावरणीय न्याय की बात होती है, तो बहुगुणा जी के संघर्ष और विचार उसकी पृष्ठभूमि में हमें दिखाई देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। जलवायु परिवर्तन के युग में जब दुनिया भर के युवा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब बहुगुणा जी का जीवन और कार्य उन्हें दिशा देते हैं।
2: उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना कैसा होता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची सफलता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए आपके योगदान में है। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के संघर्ष में भी बहुगुणा जी की परंपरा की झलक दिखती है। वे आज के युवाओं को यह संदेश देते हैं कि आवाज उठाना, असहज सवाल पूछना और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है।
1: बहुगुणा जी के जीवन और कार्य पर अनेक पुस्तकें, वृत्तचित्र और शोध पत्र लिखे गए हैं। चिपको मूवमेंट पर दर्जनों शैक्षणिक अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें बहुगुणा जी की केंद्रीय भूमिका का विश्लेषण है। अनेक फिल्मकारों ने उन पर वृत्तचित्र बनाए। चिपको, अ मूवमेंट टू सेव द ट्रीज और अन्य डॉक्यूमेंट्री उनके संघर्ष को दर्शाती हैं। उनकी जीवनी और उन पर लिखी गई पुस्तकें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अनेक लेखकों ने उनके जीवन से प्रेरित कहानियां और कविताएं लिखी हैं। उनका चरित्र भारतीय सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: यद्यपि बहुगुणा जी कभी सरकार में नहीं रहे, फिर भी उनके आंदोलन ने भारत की पर्यावरण नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अनेक अन्य कानूनों की पृष्ठभूमि में चिपको जैसे आंदोलनों का योगदान था। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है और इसमें जन भागीदारी की बात कही गई है। यह बहुगुणा जी के आंदोलन का ही परिणाम है कि आज भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इन सभी में चिपको आंदोलन और बहुगुणा जी के विचारों का असर देखा जा सकता है।
1: सुंदरलाल बहुगुणा अमर है। उनके विचारों में, उनके आंदोलन में और उन लाखों पेड़ों में जो उनके प्रयासों से बचाए गए, वे हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, हर उस युवा में जो बेहतर भविष्य का सपना देखता है और हर उस दिल में जो प्रकृति से प्रेम करता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम धरती के अतिथि हैं, न कि मालिक, और एक जिम्मेदार अतिथि की तरह हमें इस सुंदर ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। यही सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी विरासत है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना। उनके विचार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा बनकर सदैव जीवित रहेंगे।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। आज का ये कार्यक्रम सुंदर लाल बहुगुणा पर केंद्रित था। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का था। और इसके साथ ही आज का भारत विभूति कार्यक्रम सम्पन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है रेडियो रिपोर्ट का, आपके साथ मैं हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहाँ नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत रविवार को गायन और नृत्य की प्रस्तुतियाँ हुई। यह कबीर गायन, बद्रीलाल मालवीय, सुमित्रा मालवीय और साथियों का।
1: मैं आपको सर्वप्रथम कबीर साहब के भजन से चालू करूंगा, जिसमें एक नामदानी व्यक्ति, नामदानी शिष्य किस प्रकार से गुरु के आशीर्वाद के होने के बाद वो किस प्रकार से भाव विभोर होता है, वो इस भजन में प्रस्तुत है।

नाम साहेब बंदगी साहेब। परमात्मा को कैसा पाया जाए वो इस भजन में आपके सामने प्रस्तुत है। आत्मा विलाप करती है परमात्मा के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। जी हां दोस्तों, आज हम जिस कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो किसी साधारण कवि की रचना नहीं है, ये उस सृजनकर्ता की आवाज है जिसने कविता को केवल लिखा नहीं, उसे जिया, उसे जंग की तरह लड़ा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में केवल एक नाम नहीं है, वे चेतना है, वे युग की धड़कन है। उनकी कविता में शब्द नहीं है, शस्त्र हैं जो अन्याय के विरुद्ध उठते हैं और मनुष्य के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। दिनकर जी की काव्यधारा में ओज की गर्जना है तो वहीं करुणा की गहरी धारा भी है। वे वीरता के कवि हैं, पर उनकी वीरता पत्थर सी कठोर नहीं, वो संवेदना से सिंचित है और रश्मिरथ ही इसी संवेदनशील ओज का सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे मानवीय स्वर है। ये महाकाव्य केवल कर्ण की कथा नहीं कहता, ये उस हर व्यक्ति की व्यथा है जो योग्य होते हुए भी पहचान से वंचित रह जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी की।
2: रश्मि रथी की,
1: रश्मि बहुनात्र किम मुक्तेन, संक्षेपात शृणु पांडव, त्वत्समम त्वाद विशिष्टम वा कर्णम मन्ये महारथम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, बहुत अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में मेरी बात सुनो। मेरे विचार में कर्ण या तो तुम्हारे समान है या फिर तुमसे भी श्रेष्ठ, और इसीलिए मैं उसे महारथी मानता हूं।
3: यह श्लोक कर्ण के लिए श्री कृष्ण की सबसे स्पष्ट और निर्भीक स्वीकृति है। कृष्ण यहाँ तुलना करते भी हैं और तोड़ भी देते हैं, कर्ण को किसी नीची श्रेणी में नहीं रखते। त्वत् समम कहकर वे उसे अर्जुन के समकक्ष रखते हैं और त्वाद विशिष्टम कहकर उसकी अद्वितीयता को स्वीकार करते हैं। यही भाव दिनकर के रश्मि रथी की आत्मा है। कर्ण को समाज ने जो नहीं दिया, कृष्ण ने उसे शब्दों में दे दिया।
1: हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्र रक्षक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था हृदय था युधिष्ठिर, कर्ण का श्रद्धा युत हृदय था। अर्थात कर्ण का हृदय बिल्कुल निष्कपट और पवित्र कर्मों से युक्त था, वो संकट में पड़े लोगों की रक्षा करने वाला था, वो अद्वितीय दानी था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, कर्ण का हृदय श्रद्धा, त्याग और महानता से भरा हुआ था।
3: तो आइए श्रोताओं, काव्य गुंजन के इस विशेष अंक में हमारे साथ चलिए, जहां हर शब्द एक दीप है और हर भाव एक अनंत यात्रा। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं इस अद्भुत महाकाव्य को जिसके रचयिता महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्रोताओं, ये केवल काव्य गाथा नहीं बल्कि तेज, तप, त्याग और आत्मगौरव का जीवंत महागान है। मानो कर्ण के शब्दों की गूंज आपसे कुछ कहना चाह रही हो।
4: मैं कौन हूं, एक नाम या एक प्रश्न, एक जन या निरंतर किया गया संघर्ष। यदि मनुष्य को केवल उसके कुल से जाना जाए तो फिर कर्म का अर्थ क्या रह जाता है, और यदि पहचान जन्म से तय हो तो तो पुरुषार्थ किस लिए? मैं कर्ण हूं जिसका जन्म लोक लज्जा का बोझ बना और जीवन स्वयं को सिद्ध करने की साधना। मेरे पास वंश की विरासत नहीं पर शर्म की स्मृति है। मेरे माथे पर नाम नहीं लिखा पर मेरी भुजाओं में भाग्य को बदलने की शक्ति धड़कती है। मुझसे मेरी जाति पूछी गई पर मैंने अपने मौन से उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य की सच्ची पहचान शब्दों में नहीं उसके कर्म में अंकित होती है। मैं कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं उस समाज से संवाद करने आया हूं जो जन्म को धर्म मान बैठा है और पुरुषार्थ को अपराध। आओ मेरे साथ चलो, किसी युद्ध की ओर नहीं बल्कि उस अनंत संघर्ष की ओर जहां हर युग में मनुष्य को पहले मनुष्य बनने के लिए लड़ना पड़ता है। यही है मेरी यात्रा, यही है मेरी वेदना और यही है रश्मिरथ।
3: आइए श्रोताओं सुनते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का भाग एक।
1: जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास।
3: रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य के किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो श्रोताओं यह केवल कर्ण की कथा नहीं है, यह उस प्रश्न की कथा है जो हर युग में मनुष्य से पूछा जाता है। क्या मनुष्य को बड़ा उसका जन्म बनाता है या उसके भीतर जलता हुआ तेज? दिनकर कहते हैं जहां भी आग जले वह पूज्य है। गुणों की जड़ नहीं पूछी जाती, शक्ति और करुणा पहचानी जाती है। कर्ण इसीलिए महान नहीं

0: जहां जहां कर्ण पहली बार अपनी धनुष टंकार से समाज को आईना दिखाता है।
1: अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार।
0: सभा एकाएक मौन हो जाती है, धनुष की एक एक टंकार के साथ वंश का घमंड डगमगाने लगता है, जन्म का अभिमान दरकता है और तालियों से उपजा सस्ता यश अपनी ही गुफापन को उजागर कर देता है। इसी क्षण से प्रथम सर्ग की अगली यात्रा आरंभ होती है, जहां कर्ण केवल रणभूमि का योद्धा नहीं रह जाता, बल्कि समाज द्वारा स्थापित मानकों से प्रश्न करने वाला एक सजग और जागृत विवेक बनकर सामने आता है। अब श्रोताओं, आइए उस उत्तराधिकारी क्षण की ओर रुकें, जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं। सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 3 को।
1: फिरा कर्ण क्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ बताओ, बताओ कि तुम जाति हो कौन, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला,
2: जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो क्लानी से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान।
0: श्रोताओं, मनुष्य इस धरती पर सदियों से सत्ता और पहचान के द्वंद से जूझता आया है। यहाँ अक्सर कर्म से पहले परिचय मांगा जाता है और प्रतिभा से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। धर्म का नाम लिया जाता है पर उसी की आड़ में शोषण भी होता है, और जातियों के इतने सकरे खांचे बना दिए जाते हैं कि उसमें असंख्य भावनाएं घुट कर रह जाती हैं। इन्हीं भावनाओं से आहत मानो कर्ण स्वयं कह रहे हो।
3: मेरी पीड़ा केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की आवाज है जिसे योग्य होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिली, जो मंच के सामने तो खड़ा रहा पर मंच पर चढ़ने से पहले उससे उसका जन्म पूछ लिया गया। रश्मिरथी हमें यह चेतावनी देती है कि जब समाज पहचान को कर्म से बड़ा मान लेता है तो वो अपने ही भविष्य को अपमानित करता है, क्योंकि प्रतिभा को रोका जा सकता है पर इतिहास को नहीं। और यहीं से आरंभ होता है वो क्षण जहां मेरी चुनौती केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे से है।
0: कर्ण का तेज अब शब्दों में सीमित नहीं रहता, वह उसके मौन और उसकी भुजाओं में धधकने लगता है। और तभी जब अन्याय अपनी अंतिम सीमा लांघता है, सभा में एक स्वर उठता है, ऐसा स्वर जो मित्रता भी है, राजनीति भी और विद्रोह भी। ये वही क्षण है जब अपमान के सामने सम्मान की पहली ढाल खड़ी होती है और कर्ण के जीवन की दिशा एक निर्णायक मोड़ लेने लगती है। श्रोताओं, हम आपको उसी क्षण की ओर लिए चलते हैं जहां नियति और साहस आमने सामने खड़े हैं। आइए अब हम सुनते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ।
2: पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान।
1: कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सहना सका न्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रो पुत्र हो अथवा श्वपच चर्मकार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार।
0: श्रोताओं, श्रोताओं, यह वह क्षण है जहां सभा केवल राज दरबार नहीं रह जाती, वह समाज का कठोर दर्पण बन जाती है। यहां तलवारों से पहले प्रश्न पूछे जाते हैं और पराक्रम से पहले पहचान। यहां प्रतिभा को उसके तेज से नहीं, उसकी जाति से आंका जाता है और योग्यता से पहले वंश का लेखा जोखा खोला जाता है। अन्याय यहां चिल्लाता नहीं, वह शास्त्र बनकर, नियम बनकर, मर्यादा का मुखौटा ओढ़कर खड़ा होता है और उसी की ओट में अपमान को न्याय का नाम दे दिया जाता है। ये केवल उस युग की कथा नहीं, आज भी जब समाज पद, पहचान, जाति और सत्ता के तराजू पर मनुष्य को तौलता है, तब हर कर्ण इसी पीड़ा से गुजरता है। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है मानो सभा नहीं, स्वयं इतिहास ठहर गया हो और उस मौन को चीरता हुआ अब कर्ण स्वयं कह उठता है।

0: आज पहली बार मैं स्वयं से पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? वो जिसे उसके तेज से पहचाना जाना चाहिए, या वो जिसे नाम और जन्म के तराजू पर तौला जाता है? मेरे हाथों में धनुष है, ललाट पर सूर्य का तेज, फिर भी मेरी पहचान से पहले मेरी जाति पूछी जाती है। क्या वीरता भी किसी वंश की मोहताज होती है? इस सभा में मेरी भुजाएं नहीं कांपी, पर मन अवश्य थर्राया है, अन्याय से नहीं बल्कि उस सत्य से जिसे सब जानते हैं, पर स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं। यदि सम्मान मांगना अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं, और यदि तेज ही मेरी जाति है तो आज इस अपमान की अग्नि में तपकर मैं स्वयं को पहली बार पूरी तरह पहचान रहा हूं।
1: श्रोताओं, इसी सन्नाटे में जहां नियम अन्याय का कवच बन चुके हैं और मौन कायरता का साथी, सभा के बीच से एक स्वर उठता है। यह स्वर केवल किसी राजकुमार का नहीं है, यह उस व्यक्ति का है जो पहली बार सत्ता को नहीं अन्याय को चुनौती देने जा रहा है। श्रोताओं, ये क्षण केवल कर्ण के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, ये उस व्यवस्था के विरुद्ध पहला सार्वजनिक प्रतिरोध है जो प्रतिभा को जन्म से बांधना चाहती है, और यही इसी एक स्वर के साथ मित्रता जन्म लेती है, राजनीति आकार लेती है और इतिहास एक नया मोड़ लेने को विवश हो जाता है।

0: श्रोताओं, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वह विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है। आगे हम प्रथम सर्ग के अंतिम भागों 5, 6 और 7 का काव्य पाठ सुनेंगे। यह काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी आपके रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
2: और मैं दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। भारत के महान खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत नार्लिकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में 19 जुलाई 1938 को हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष थे। इसके बाद वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर जयंत नार्लिकर की शिक्षा वाराणसी में हुई। उनकी माता तत्कालीन बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक थीं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य से भी उनका लगाव था। वे बहुत शालीन, सुसंस्कृत और शिक्षित महिला थीं।
1: श्रोताओं, युवा डॉक्टर नार्लिकर असाधारण प्रतिभा के धनी थे। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में वे हमेशा प्रथम रहते थे। गणित उनका प्रिय विषय था। इसके अलावा किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। सन 1959 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वे विश्वविद्यालय में प्रथम आए। उनके विषय गणित और खगोल भौतिक थे।
0: उनके पिताजी उन्हें उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते थे। इंग्लैंड से पढ़कर लौटे लोगों ने उन्हें आगाह करते हुए आत्मसंतुष्ट न होने की सलाह दी थी। उन लोगों के अनुसार इंग्लैंड का जीवन बड़ा ही कठिन था, परंतु कठिन परिश्रम के बल पर डॉक्टर नार्लिकर पूरी तरह सफल रहे। उनके पिता से और विशेष रूप से उनके मामा डॉक्टर वसंत राव हुजूर बाजार से मिले परामर्श से उनका काम आसान हो गया।
1: उनके माता पिता के अलावा उनके शिक्षक और उन्हें सलाह देने वाले फ्रेड हॉयल का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर पर उनके असाधारण परिणाम ने उनको छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यहां उन्होंने केवल 2 वर्ष में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर ली।
0: संयोग से खगोल भौतिकी के विश्वविख्यात अध्यापक उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उनका नाम था फ्रेडरिक होयल। लोग उन्हें फ्रेड होयल भी कहते थे। होयल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे और खपिंडो यानी सेलेशियल बॉडीज की गति और स्थिति पर अनुसंधान करा रहे थे। डॉक्टर नार्लिकर ने फ्रेडरिक होयल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने के लिए पंजीकरण कराया और अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया। होयल ने भी डॉक्टर नार्लिकर को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था। सन 1963 में डॉक्टर नार्लिकर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। वे कैम्ब्रिज में सन 1957 से 1962 तक रहे।
1: श्रोताओं, डॉक्टर नार्लिकर ने 15 वर्ष तक विदेश में रहने के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। 22 वर्ष की आयु में वे रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के सदस्य हो गए। उन्हें किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो भी नियुक्त किया गया। उनके पिता भी इस संस्थान के सदस्य थे। उनकी पीएचडी के शोध प्रबंधन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों और अलग अलग खपिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण और दबाव, सृष्टि के निर्माण और अन्य दूसरे विषयों के बारे में अनुसंधान शामिल थे। उन्होंने लोकप्रिय बिग बैंग सिद्धांत के विषय में भी विचार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अनेक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वह स्थिर है। उन्होंने इसे स्थिर स्थिति यानी स्टेडी स्टेट कहा। इस सिद्धांत ने इस विषय पर नया प्रकाश डाला।
0: फ्रेड होयल के साथ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सादृश्य सिद्धांत यानी कन्फॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। डॉक्टर नार्लिकर और फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर कार्य किया, जिसमें स्थिर स्थिति सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और विद्युत गति यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स शामिल थे। उन दोनों ने ये मत प्रतिपादित किया कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में विद्यमान अन्य शक्तियों के बल का पदार्थ के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वो पदार्थ की आकृति और आकार को भी प्रभावित करता है।
1: श्रोताओं, अंतरिक्ष के पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनेक अनुसंधानों को असाधारण माना जाता है। यूरोप में उन्हें अनेक संस्थानों से पुरस्कार और पदक मिले। सन 1969 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर नार्लिकर और प्रोफेसर फ्रेड होयल को भारत आकर के भाषण देने के लिए आमंत्रित किया।
0: सन 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडम अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले ये प्रतिष्ठित अवार्ड 3 भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जा चुका था। ये अवार्ड सन 1944 में डॉक्टर होमी भाभा को, सन 1948 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को और 1961 में डॉक्टर हुजूर बजरा को प्रदान किया गया था।
1: श्रोताओं, यह अवार्ड गणित, खगोल, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान के लिए हर 2 वर्ष में डॉक्टर जेसी एडम की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एडम एक असाधारण खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने सन 1864 में नेपच्यून ग्रह के विद्यमान होने की भविष्यवाणी की थी।
0: डॉक्टर नार्लिकर का विवाह सन 1966 में मंगला सदाशिव राजवाड़े के साथ हुआ। 1969 में जब वे भारत वापस आए तब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने उन्हें खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर के पद का कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया।
1: डॉक्टर नार्लिकर ने भी अपने देश में अपनी सेवाएं प्रदान करने का निर्णय कर लिया था। सन 1972 में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में कार्यभार संभाल लिया। अनुसंधान और शिक्षण के अलावा वे डॉक्टरेट के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करते थे। यहां उन्होंने टेकियॉन पर अनुसंधान जारी रखा। टेकियॉन ऐसे कण हैं जो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गति से चलते हैं। डॉक्टर नार्लिकर के मतानुसार कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल टेकियॉन कणों के आधार पर होते हैं। वे बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और समाविष्ट कर लेते हैं और अत्यधिक दबाव के साथ ब्लैक होल की सतह को संकुचित कर देते हैं।
0: भारत आने के बाद डॉक्टर नार्लिकर ने एक और कार्य किया, लोगों में विज्ञान और विशेष रूप से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टर नार्लिकर ने अपनी मातृभाषा मराठी में आकाशाशी जड़ले नाते यानी आकाश से जुड़ा नाता नामक एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान से संबंधित कहानियां भी लिखी। उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी किया गया है।

0: अवार्ड प्रदान कर। इस पुरस्कार में 25,000 रुपए नकद और एक पदक प्रदान किया जाता है। सन 1990 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार और सन 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया।
1: 12 मार्च 2003 को उन्हें यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2002 प्रदान किया गया। तो श्रोताओं, ये था जीवन परिचय डॉक्टर नार्लेकर का। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी सियालकोट आए। वहां उन्होंने लगातार व्याख्यान दिया। उस समय की घटनाओं का वर्णन श्री गुडविन ने किया है। वे मद्रास से जम्मू आकर स्वामी जी से मिले थे और साथ साथ भ्रमण किए थे। उन्होंने लिखा है,
1: यद्यपि स्वामी जी विवेकानंद के भग्न स्वास्थ्य का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, तथापि वो पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। इस बार उनका कार्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिम। कश्मीर में उन्होंने कई सप्ताह बिताए और वहां के महामान्य महाराजा ने स्वामी जी के वक्तव्य पर आकृष्ट होकर उन्हें वचन दिया है कि स्वामी जी यदि उस राज्य में किसी व्यवहारिक योजना को रूपायित करना चाहे तो उन्हें महाराजा की सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद कुछ दिन जम्मू में रहकर उन्होंने वहां के विशेष श्रोताओं के समक्ष हिंदी में व्याख्यान दिया। जम्मू से सियालकोट जाकर 31 अक्टूबर के प्रातःकाल लाला मूलचंद MALLB महाशय के घर में आतिथ्य ग्रहण किया। यहां पर उनके दो भाषणों का आयोजन हुआ था, एक अंग्रेजी में 31 अक्टूबर की शाम को और दूसरा हिंदी में। दोनों व्याख्यानों का और यहां तक कि इस काल के उनके समस्त व्याख्यानों का एक सामान्य वक्तव्य ये था कि धर्म के नाम से परिचित होने के लिए उसे व्यावहारिक रूप से ग्रहण करना होगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी दिन पर दिन धर्म के इसी पक्ष पर अधिकाधिक बल दे रहे हैं और वो जिन जिन स्थानों को जा रहे हैं वहां वहां के स्थानीय प्रयोजन के अनुसार तथा वहां के लोगों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करके अपने मत को रूपायित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ सियालकोट में एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने विशेष आग्रह दिखाया और उनके वहां 2 दिन निवास के फलस्वरूप उस प्रस्ताव को कार्यकारी बनाने के लिए लाला मूलचंद को सचिव बनाकर नगर के प्रभावशाली लोगों की एक कमेटी गठित हो गई।
2: 5 नवंबर को स्वामी जी अपनी टोली के साथ रवाना होकर सियालकोट से लाहौर पहुंचे। वहां भी उनके भाषणों का सिलसिला चलता रहा।
0: गुडविन महोदय ने और भी लिखा है,
1: शुक्रवार की शाम को पुरानी हवेली के प्रांगण में उन्होंने हमारी समस्याएं विषय पर एक भाषण दिया। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे। जितने लोग आए थे उन सभी के लिए उस प्रांगण में यथेष्ट स्थान नहीं था और बहुत से लोगों को निराश करना पड़ेगा ये सोचकर ऐसा लग रहा था कि शायद सभा ही ना हो सके। कम से कम 2000 श्रोताओं को लौटा देने के बाद भी पूरे 4000 श्रोताओं को एक बड़ा मनोहारी व्याख्यान सुनने को मिला। परवर्ती मंगलवार को प्रोफेसर बोस के बंगाल सर्कस के पंडाल में स्वामी जी का भक्ति पर व्याख्यान सुनने को एक विशाल श्रोता मंडली एकत्र हुई थी। इसके परवर्ती शुक्रवार 12 नवंबर को तृतीय व्याख्यान ने विपुल सफलता अर्जित की। इस भार व्यवस्था का पूरा भार लिया था लाहौर के 4 महाविद्यालयों के छात्रों ने और वो सर्वांग सुंदर बन पड़ा था। श्रोताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि कोई असुविधा उत्पन्न हो, तथापि इसमें लाहौर के सभी श्रेणियों के चुने हुए लोग उपस्थित थे। उक्त संध्या को व्याख्यान का विषय था वेदांत। स्वामी जी ने 2 घंटे से भी अधिक समय तक अद्वैतवाद तथा भारतीय धर्म के विषय में एक ऐसा भाषण दिया जो अति उच्च कोटि का हुआ था।
2: गुडविन महोदय खुद उन भाषणों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने आगे कहा,
1: स्वामी जी के भारत में अब तक हुई सभी व्याख्यानों में सर्वोत्तम इस व्याख्यान का प्रत्येक शब्द शक्तिमय था। इस व्याख्यान के फलस्वरूप बड़े उत्साह की सृष्टि हुई। अतएव लाहौर के जो छात्र सर्वदा स्वामी जी की सेवा में रहते थे उनके बीच अपनी सोच को कार्य रूप में परिणत करने के योग्य प्रेरणा जगाने में स्वामी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। वस्तुतः उन्होंने विद्यार्थियों की एक सभा बुलाई जिसमें उनके सुझाव सुनने के पश्चात एक पूर्णता असांप्रदायिक समिति का गठन हुआ और चर्चा के द्वारा उसका कर्तव्य निर्धारित हुआ, गरीबों की सेवा। यथा संभव उन्हें प्रत्येक मोहल्ले से ढूंढ निकालना होगा और निर्धन रोगियों की सेवा शुश्रूषा। तथा निर्धनों के लिए निशा विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी।
0: लाहौर में स्वामी जी जितने दिन रहे प्रायः प्रतिदिन वे विभिन्न संप्रदाय के लोगों से मिलते थे। वहाँ आर्य समाज और सनातन धर्मावलंबियों में काफी झगड़ा था। समाजी मूर्ति पूजा के विरुद्ध टिप्पणी किया करते थे। स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देकर उन्हें समझाया था कि मूर्ति पूजा कैसे और कब शुरू हुई थी और उसका औचित्य क्या है। इसी तरह उन्होंने दोनों दलों में मेल मिलाप करवाया।
2: उन्हीं दिनों लाहौर में ग्रेट इंडियन सर्कस आया हुआ था। एक दिन उसके मालिक बाबू मोतीलाल बोस किसी कार्यवश नागेंद्र नाथ गुप्त के घर आए हुए थे। स्वामी जी ने देखते ही पहचान लिया कि वे उनके बचपन के मित्र हैं और तुरंत उनके साथ दोस्त के समान दिल खोल कर वार्तालाप करने लगे। बचपन में ये दोनों एक ही अखाड़े में व्यायाम करते थे। अपने बाल संगी के अपूर्व तेज प्रतिभा और शक्तिपूर्ण चेहरा देखकर मोती बाबू की आंखें चौंधिया गईं। स्वामी जी जितना ही उनके साथ अपनों के समान व्यवहार और वार्तालाप करने का प्रयास करते वे उतने ही अधिक संकुचित महसूस करते। आखिरकार खूब साहस जुटाकर मोती बाबू ने अत्यंत दीन स्वर में स्वामी जी से कहा,
3: भाई अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? तुम तो इतने बड़े गुरु हो गए हो, हाँ?
4: क्यों रे मोती, तू पागल हो गया है क्या? मैं क्या हो गया हूँ? अरे मैं तो वही नरेन हूँ और तू भी तो वही मोती है, इसमें छोटे बड़े का सवाल ही नहीं उठ सकता।
0: दोनों दोस्त गले लग गए। स्वामी जी के साथ एक अन्य सुविख्यात व्यक्ति की भेंट उल्लेखनीय है। लाहौर के FC कॉलेज के गणित के प्राध्यापक श्रीयुत गोस्वामी स्वामी जी के साथ रहकर बड़े ही उपकृत तथा आनंदित हुए थे। बाद में संन्यास लेकर ये स्वामी राम तीर्थ के नाम से सुपरिचित हुए तथा स्वामी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अमरीका तथा स्वदेश में वेदांत प्रचार के कार्य में लग गए। इनके अनेक शिष्य तथा भक्त हुए और अपनी प्रकाशित व्याख्यान माला के द्वारा ये उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय हुए। इन्हीं के नेतृत्व में लाहौर के छात्रों ने स्वामी जी के व्याख्यानों का आयोजन किया था। स्वामी जी के प्रति इतनी असीम श्रद्धा थी और एक दिन उन्होंने स्वामी जी को उनके संगियों सहित अपने घर में निमंत्रित करके भोजन कराया था। इस भोज में श्री गुडविन भी उपस्थित थे। भोज के अंत में स्वामी जी ने एक भजन गाया था।

0: जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहूं होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम।
1: लाहौर में स्वामी जी 10-11 दिन रहे। व्याख्यानों और स्वामी जी के प्रभाव के विषय में प्राध्यापक तीर्थराम ने पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति के नाम एक पत्र लिखा था।
2: तीर्थराम स्वयं ही वेदांती थे, इस कारण स्वाभाविक रूप से भक्तिवाद के प्रति उनका वैसा आकर्षण न था और उस विषय पर स्वामी का व्याख्यान अपूर्व रह जाने से उसका यथोचित प्रभाव भी नहीं हो सका था। इसलिए तीर्थराम के पत्र में उसके विषय में थोड़ी कमी रहने पर भी बाकी व्याख्यानों की उन्होंने उच्च सुर में प्रशंसा की है। पत्र इस प्रकार है।
3: श्री महाराज जी प्रणाम। 10 दिनों तक यहाँ निवास करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कल देहरादून के लिए रवाना हो गए। उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी में 3 व्याख्यान दिए। स्वामी जी यहाँ सनातन धर्म सभा के अतिथि थे और उन्होंने राजा ध्यान सिंह की हवेली में निवास किया। उनका पहला एवं 3रा व्याख्यान इसी स्थान पर हुआ था। हाँ, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके साथ 3 सन्यासी और एक अंग्रेज महिला सहित 3 इंग्लैंडवासी हैं। इन अंग्रेजों में एक संवाददाता भी थे। अब व्याख्यान के दौरान ये स्वामी जी के भाषण लिख लेते और ब्रह्मवादिन तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के पास उन्हें भेज देते। ये अंग्रेज बड़े सज्जन, बड़े कर्म कुशाल हैं और स्वामी जी के प्रति उनकी विशेष भक्ति भी है। अन्य 2 अंग्रेज भी बड़े धनाढ्य हैं और स्वामी जी का व्यवहार सामान्यतः यही लोग वहन करते हैं। इसी बीच पहला और 2रा व्याख्यान ट्रिब्यून में प्रकाशित हो चुका है। संभवतः 3रा व्याख्यान भी उसी पत्र में मुद्रित होगा। पहले व्याख्यान का विषय था हिंदू धर्म के सामान्य आधार। व्याख्यान कुल मिलाकर अच्छा ही हुआ, यहाँ तक कि अनेक लोगों की दृष्टि में यह अति उत्तम भी रहा। हाँ।
1: उन्होंने आगे और लिखा है।
3: द्वितीय व्याख्यान का विषय था भक्ति और 3रे व्याख्यान का विषय वेदांत था और ये पता है पूरे 2.5 घंटे तक चला। श्रोतागण इतने तल्लीन हो गए थे कि इसके द्वारा एक ऐसी परिवेश की सृष्टि हुई कि लोग स्थान काल तक की सुध भूल गए थे। और संक्षेप में कहा जाए तो ये एक ऐसी सफलता थी जैसी कदाचित ही कभी दीख पड़ती है। श्रोता काफी संख्या में उपस्थित थे और वे चाहे अंग्रेज रहे हों या मुस्लिम, आर्य समाजी रहे हों या ब्रह्म समाजी, ये सभी के लिए आंखें खोलने वाला सिद्ध हुआ। मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापक भी इससे काफी लाभान्वित हुए थे।
2: तीर्थराम प्रभावित होकर आगे लिखते हैं।
3: व्याख्यान तो अच्छे हुए ही, परंतु इनकी तुलना में अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामी जी का ज्ञान और भी सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ था। आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के नेताओं के साथ उनकी चर्चा के दौरान में उपस्थित था। उन्होंने उन लोगों के प्रश्नों के ऐसे तीक्ष्ण उत्तर दिए कि लोग हतप्रभ होकर लौटे। तथापि मजे की बात तो ये रही कि उन्होंने ऐसे एक भी शब्द को उच्चारण नहीं किया जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। विद्वता भी इनमें यथेष्ट है। उन्हें बहुत से श्रुति वाक्य कंठस्थ हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, शंकर भाष्य, श्री भाष्य, माधव भाष्य का अध्ययन किया है और वल्लभाचार्य के अणुभाष्य को भी उन्होंने पढ़ने का संकल्प लिया है। सांख्य एवं योग में उनकी गहरी पैठ है तथा भगवत गीता के वे अपूर्व व्याख्याता हैं। फिर वे गाते तो अत्यंत मधुर हैं, जिसमें कृपा और प्रीति का भाव है।
2: तीर्थराम जी स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप स्वामी जी को एक सोने की घड़ी उपहार में दी थी। स्वामी जी ने सहर्ष उस घड़ी को स्वीकार किया और कहा,
0: वाह, बहुत सुंदर घड़ी है, इसे तुम ही अपनी जेब में रख लो, मैं तुम्हारी जेब से ही इस घड़ी का उपयोग करूंगा।
1: तीर्थराम समझ गए स्वामी जी को कोई भी लालच छू नहीं सकता, सोना भी नहीं। लाहौर की एक और घटना के बारे में सुनिए। श्रीयुत नागेंद्रनाथ गुप्त की स्मृति में कथा से भी लाहौर की 2 छोटी पर रोचक घटनाओं का पता चलता है। स्वामी जी और नागेंद्र बाबू एक दिन नियंत्रित होकर श्रीयुत बख्शी जय श्री राम के घर गए। जय श्री राम स्वामी जी से पहले ही धर्मशाला नामक स्थान में मिल चुके थे। उस घर में पहुंचते ही गृह स्वामी ने स्वामी जी को धूम्रपान हेतु एक सुंदर नया हुक्का दिया, परंतु हुक्के को मुंह में लगाने के पूर्व ही स्वामी जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा,
0: यदि जाति भेद के विषय में आपकी दृढ़ आस्था हो तो मुझे अपना हुक्का मत दीजिएगा, क्योंकि कल यदि कोई और भी धूम्रपान के लिए मुझे अपना हुक्का दे तो मैं आनंद पूर्वक उसे पीऊंगा। कारण यह है कि मैं जाति पाति की सीमा के परे जा चुका हूँ।
1: गृह स्वामी जी ने सविनय कहा कि स्वामी जी के धूम्रपान करने पर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
2: एक दिन शाम को वे चिंतित मुख मुद्रा में नगेंद्र बाबू के पास आकर बोले, यदि इससे देश का किसी प्रकार से कल्याण हो तो मैं प्रसन्न चित्त से जेल जाने को तैयार हूँ। स्वामी जी स्वदेश लौटने के बाद उस गौरव का उपभोग करने के बजाय अगर आवश्यकता हो तो आत्म बलिदान के द्वारा भी देश का मंगल करने की सोच रहे थे और अंग्रेज सरकार के अत्याचार के फलस्वरूप अनेक वरेण्य देशभक्तों को कारावास स्वीकार करना पड़ रहा था। ये सोचकर उनका चित्त उस समय दुख के भार से पीड़ित था। प्रसंगतः आपको जानकारी दे दूं कि 27 जुलाई 1897 को बाल गंगाधर तिलक बंबई सरकार द्वारा राजद्रोह के अपराध में पकड़ लिए गए थे और अदालत में विचार होने के बाद उन्हें 1.5 वर्ष का कारावास का दंड मिला था। इन्हीं दिनों स्वामी जी जापान तथा जापानियों के देश प्रेम की खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे,
0: उनका स्वदेशी हमारे लिए धर्म है, उनकी राष्ट्रीय जनध्वनि है, महामहिम जापान दीर्घजीवी हो, उनके लिए सर्वप्रथम और सबसे ऊपर स्वदेश का स्थान है। स्वदेश के सम्मान तथा अखंडता की रक्षा के लिए उनके द्वारा कोई भी बलिदान असंभव नहीं है।
1: लाहौर के बाद स्वामी जी की सिंध जाने की बड़ी इच्छा थी, परंतु विविध कारणों से उनका वहां जाना नहीं हो सका और उन्होंने लाहौर से देहरादून की यात्रा की। उन्होंने एक पत्र में देहरादून जाने के कारण बताए थे,
0: प्रथमतः तो कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर जो इंग्लैंड से आकर पिछले लगभग 9 महीनों से मेरे साथ घूम रही हैं, देहरादून में जमीन खरीद कर एक अनाथालय बनाने के लिए विशेष उत्सुक हैं। द्वितीय मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ते में एक मठ बने, पर उसके संबंध में भी मैं कुछ नहीं कर सका हूं। इसके अतिरिक्त देशवासियों ने भी जो पहले मठ को सहायता देते थे वो बंद कर दी है। उनकी धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी धन लेकर लौटा हूं। इतना ही नहीं, इस बार श्री राम कृष्ण का महोत्सव तक होना कठिन है, क्योंकि विलायत होने के कारण रासमणि के उत्तराधिकारी मुझे उद्यान में जाने नहीं देंगे। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि राजपूताना आदि में मेरे जो 2-4 मित्र हैं उनसे मिलकर कलकत्ते में एक केंद्र बनाने के लिए प्रयास करना। कलकत्ते में एक मठ स्थापित हो जाने पर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, तभी मुझे विश्वास होगा कि जीवन भर दुख कष्ट उठाकर मैंने जो भी कार्य किया है वो मेरे शरीर त्याग के बाद समाप्त नहीं हो जाएगा। आज ही देहरादून जा रहा हूँ।
2: देहरादून से स्वामी जी राजपुताना की ओर अग्रसर हुए। उनका गंतव्य स्थान खेतड़ी था। राजा अजीत सिंह उस समय तक इंग्लैंड के राज दरबार से लौट आए थे। बंबई में उनके जहाज से उतरने पर स्वामी जी के निर्देशानुसार रामकृष्ण मिशन की ओर से उनकी संवर्धना की गई। उस समय राजा अपने गुरुदेव का दर्शन करने को आकुल थे और आचार्य भी अपने सुयोग्य शिष्य को दर्शन देने के लिए उत्सुक थे। अतः वे सहारनपुर, दिल्ली, अलवर तथा जयपुर होते हुए खेतड़ी की ओर चल पड़े। दिल्ली में उन्होंने मात्र 4-5 दिन ही निवास किया।
1: दिल्ली से स्वामी जी 1 दिसंबर की ट्रेन से अलवर की ओर चले। चारों ओर फैले बालू के ढूंढों से बीच से गुजरते हुए अंत में ट्रेन जब रेवाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो पता चला कि खेतड़ी नरेश के लोग स्वामी जी को ले जाने के लिए पालकी, ऊंट, घोड़े आदि विविध प्रकार के वाहनों सहित वहां उपस्थित हैं। खेतड़ी उन दिनों जयपुर के अधीन एक सामंती राज्य था। जयपुर से रेगिस्तान के रास्ते उसकी दूरी लगभग 90 मील थी, परंतु रेवाड़ी से ये दूरी लगभग 20 मील कम थी। राजा अजीत सिंह ने इस छोटे मार्ग को ही स्वामी जी की यात्रा के लिए उत्तम समझा था।
2: खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी महाराजा के अतिथि के रूप में रहे। पुरानी बातों को याद कर स्वामी जी ने कहा था,
0: यहीं पर एक दिन मैं साधारण फकीर के वेश में आया था। तब राजकीय रसोईया बड़ा नाक भों चढ़ाकर शाम को थोड़ा सा कुछ खाने को देता था और अब पलंग के नर्म गद्दे पर सोने की व्यवस्था, कितने ही लोग हाथ जोड़े सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात कितनी सत्य है, अवस्था पूज्यते राजन, ना शरीरम शरीरिणाम।
1: खेतड़ी नरेश ने स्वयं ही 12 मील पथ अग्रसर होकर स्वामी जी की चरण वंदना की और उन्हें अपने 6 घोड़ों के रथ पर बैठाकर राजधानी ले आए। खेतड़ी राज्य में उस समय महासमारोह चल रहा था। राजा केवल कुछ दिनों पूर्व ही यूरोप भ्रमण कर स्वदेश लौटे थे। उसके उपलक्ष्य में प्रजा ने उनके अभिनंदन और अपने हर्षोल्लास के लिए महोत्सव का आयोजन किया था। इस पर राजगुरु के आगमन से सबका उत्साह दुगना हो गया। इसी कारण इस उपलक्ष्य में वहां दिन भर भोज, आतिशबाजी, आलोक सज्जा, संगीत आदि विविध प्रकार के समारोह का आयोजन चलता रहा। राज्य के विशिष्ट जन भी उनका सत्कार करने को एकत्र हुए। सम्मेलन के स्थान पर स्वामी जी और राजा के उपस्थित होने पर दोनों की अभ्यर्थना के उपरांत अभिनंदन पत्र दिया गया।
2: स्वागत सभा में खिचड़ी के लोगों ने अपनी परंपरागत रीति के अनुसार 5 थालियों में स्वर्ण मुद्राएं भरकर राजा को उपहार दिया। फिर राजा ने चढ़ावे का अधिकांश भाग राज्य में शिक्षा कार्य हेतु दान कर दिया। राजा के भेंट देने के उपरांत उपस्थित सभी राज कर्मचारी तथा प्रजावृंद एक एक कर स्वामी जी के सामने से होकर जाने लगे और प्रत्येक ने उन्हें प्रणाम करके 2 रौप्य मुद्राएं प्रणामी के रूप में दी। कार्यक्रम में कुल 2 घंटे लगे थे। राजा जी ने खेतड़ी से विदाई के समय स्वामी जी को 3,000 रुपए अर्पित किए थे। उन्हें स्वामी सदानंद तथा स्वामी सच्चिदानंद के हाथों मठ भेज दिया गया।
1: स्वामी जी के लिए खेतड़ी का काम जितना आनंददायक था उतना ही विश्रामदायक भी था। व्याख्यान देने और अपने लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के अतिरिक्त बचे हुए समय के दौरान वे अश्वरोहण, विभिन्न स्थानों का परिदर्शन और अपने संगियों और राज परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप किया करते थे।
2: एक बार जब खेतड़ी नरेश और स्वामी जी अश्वरोहण करते हुए चले जा रहे थे, स्वामी जी ने देखा कि राजा के हाथ से काफी खून बह रहा है। स्वामी जी के मार्ग से एक कंटीले वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से हटाकर पकड़े रहने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ होगा। स्वामी जी के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर राजा ने उसे हंसकर उड़ा दिया। उन्होंने कहा था, क्या सर्वदा धर्म रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है स्वामी जी? युवा राजा वस्तुतः एक सच्चे क्षत्रिय थे।
1: खेतड़ी से स्वामी जी ब्रह्मचारी कृष्णलाल को साथ लेकर कलकत्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इंदौर, खंडवा, रतलाम आदि स्थानों से होकर वे लौटे। कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद भगिनी निवेदिता मुंबासा नामक जहाज से कलकत्ता आई। स्वामी जी ने स्वयं जाकर कलकत्ता बंदरगाह पर उनका स्वागत किया।
2: यहाँ पर निवेदिता के भारत आगमन के विषय में 2-4 बातें कहना आवश्यक होगा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी कि निवेदिता भारत वर्ष में आकर भारतीय नारियों की सेवा में लग जाएं, परंतु वे निवेदिता की स्वाधीन इच्छा में हस्तक्षेप करने को प्रस्तुत न थे। विशेषकर वे जानते थे कि भारतीय जीवन धारा इंग्लैंड की तुलना में इतनी भिन्न है और यहाँ की आर्थिक अवस्था भी इतनी खराब है कि संभव है निवेदिता उसके साथ सामंजस्य बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो। अतः यद्यपि निवेदिता भारत आने का आग्रह व्यक्त कर रही थी, तदापि स्वामी जी ने उन्हें सब बातों का विचार करके निवेदिता के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब वे समझ गए कि निवेदिता का संकल्प अटल और विश्वसनीय है, तब भी उन्होंने अपने एक पत्र 29 जुलाई 1897 में उनके समक्ष भारतीय परिस्थितियों का स्पष्टीकरण किया और कहीं वे बाद में वास्तविकता को जानने के बाद पश्चाताप न करें, इसलिए उन्हें पहले से ही सावधान कर दिया और इसके साथ ही अपना आमंत्रण भेजते हुए लिखा,
0: मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है भारत के कार्य में तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। भारत के लिए, विशेषतः भारत के नारी समाज के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी की एक सच्ची सिहिनी की आवश्यकता है। भारत वर्ष अब भी महीयसी नारियों को जन्म नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों से उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, निष्ठा, पवित्रता, असीम प्रेम, दृढ़ता और सर्वोपरि तुम्हारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले केल्टिक रक्त के कारण तुम एक ठीक वैसी ही नारी हो जिसकी आज आवश्यकता है। परंतु कठिनाइयां भी अनेक हैं। यहां पर दुख, अंधविश्वास तथा दासत्व का जो साम्राज्य है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। इस देश में आने से तुम्हें अर्धनग्न नर नारियों के ऐसे समूह के बीच निवास करना होगा जिनमें जाति एवं स्पर्श विषयक अद्भुत विचार हैं, जो भय अथवा घृणा के कारण गोरों से दूर ही रहना चाहते हैं और गोरे लोग भी उनसे अत्यंत घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरी नस्ल के लोग भी तुम्हें सनकी समझेंगे और तुम्हारी हर गतिविधि को शंका की दृष्टि से देखेंगे। यदि तुम इन सब बातों के उपरांत भी कर्म में लगे रहने का साहस करो तो फिर तुम्हारा शत बार स्वागत है। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व तुम्हें भली भांति विचार कर लेना होगा और इस कार्य के दौरान बाद में यदि तुम कभी असफल या संतुष्ट हो भी जाओ तो मेरी ओर से यह निश्चित रूप से जान लो कि भले ही तुम भारत के लिए कार्य करो या ना करो, वेदांत को त्याग दो या उसे धरे रहो, मैं आमरण तुम्हारे साथ हूं। हाथी के दांत और मर्द की बात, एक बार जो निकल आते हैं फिर वापस नहीं जाते।
1: इसके साथ ही एक अन्य विषय में भी उन्होंने निवेदिता को सावधान कर दिया। मिस मूलर का स्वभाव स्वामी जी बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। वे अत्यंत हठी और हर मामले में अपना मत चलाने को व्यग्र थी। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने पर बात बात में कलह के बीच में पड़कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः भुलाकर उसी व्यक्ति का सर्व प्रकार से अनुसरण करना पड़ता है। स्वामी जी जानते थे कि निवेदिता स्वाभाविक रूप से ही इस नवीन क्षेत्र में स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य करना पसंद करेगी और अपने व्यक्तित्व का वे इस प्रकार पूर्ण रूपेण विसर्जन भी नहीं कर सकेगी। अतएव उन्होंने निवेदिता को सावधान करते हुए लिखा,
0: तुम्हें अपने ही पांव पर खड़े रहना होगा और मिस मूलर या किसी अन्य पर निर्भर होने से काम नहीं चलेगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए श्रोताओं, आपको देते हैं आज की सभा समापन से पूर्व हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 का समय होगा अक्षय निधि कार्यक्रम का। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। कल आप सुनेंगे इसका 126वां सूक्त। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:20 से। नियमित कार्यक्रम वतन का राग 8:00 प्रसारित किया जाता है। कल का यह कार्यक्रम केंद्रित रहेगा भगवती चरण बोहरा की शहादत पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें कल का विषय रहेगा खेलना क्यों जरूरी है। हमारी सेना हमारा गर्व, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल प्रातः 9:00 और संध्या 7:00। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 भाग 4 का एपिसोड कल 27 आप सुनेंगे, जिसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखली की चर्चा सुनी जा सकेगी। विशेष कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे शहीद भगत सिंह नाटक का भाग 3 माज शैली में। दिन में 10:00 और रात्रि 8:00 कार्यक्रम होगा देश के संस्थान। ये कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा DRDO पर। प्रस्तुति होगी दीपक नेमा और भगवती सक्सेना की। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर। 11:00 कार्यक्रम सुना जा सकेगा कल दिन में 11:00 और रेडियो रिपोर्ट में आप सुनेंगे सदा नीरा।

दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक। इसका 57वां भाग कल प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थे कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। रेडियो आजाद हिंद से आप जुड़े रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और अब रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए